0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: जय गुरुदेव. अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन की तैयारी करिए. अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा
3: 13 सितंबर रविवार
2: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन. वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे, ऑन 732-357-8200. जय गुरुदेव.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने. उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह. आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है. लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है. लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी.
9: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें. बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध दूध ले सब्जी वब्जी खरीद, ही इज अनबिलीवेबल. कभी भी उससे बात होती है सेम, जैसा वो तब था वैसा ही आज भी.
8: एक विनर और एक सिक्स प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई. सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, कल सिर्फ मिर्ची पर.
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
10: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची. वीकेंड ऑफिशियली ऑन है. बस दो चीजें चाहिए, गुड म्यूजिक और वो फ्रेंड जो बोलता है बस एक ड्रिंक और फिर सनराइज देख के ही घर जाता है. कीप द वॉल्यूम अप बिकॉज़ द नाइट इज यंग और हम भी टेक्निकली यंग ही है.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot. आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
5: नो
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने। उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
12: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध ले सब्जी वब्जी खरीद, ही इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम, जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
11: एक विनर और एक सिक्स्थ प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, कल सिर्फ मिर्ची पर।
0: मिर्ची टॉप 20 सुरेन के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
13: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए. गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
7: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने. उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह. आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है. लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है. लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी.
8: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें. बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध ले सब्जी वब्जी खरीद, ही इज अनबिलीवेबल. कभी भी उससे बात होती है सेम, जैसा वो तब था वैसा ही आज भी.
7: एक विनर और एक सिक्स्थ प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई. सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, कल सिर्फ मिर्ची पर.
0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go. We are...

रिस्पेक्ट, और अगर सोफा पे हो ऑल्सो मोर रिस्पेक्ट। अगर आप दोनों के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंग्रेचुलेशन, यू आर द वीकेंड। क्लब मिर्ची में म्यूजिक कंटिन्यूज।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू linemtg.com।
3: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
2: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
4: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने। उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
5: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती है तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध ले सब्जी वब्जी खरीद, ही इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
4: एक विनर और एक सिक्स्थ प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, कल सिर्फ मिर्ची पर।
0: Only on Mirchi. It's hot. Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पार्टी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योम्तिका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन अंतिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.
0: क्लब मिर्ची

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची. वीकेंड ऑफिशियली ऑन है. अब बस दो चीजें चाहिए, गुड म्यूजिक और वो फ्रेंड जो बोलता है बस एक ड्रिंक और फिर सनराइज देख के ही घर जाता है. कीप द वॉल्यूम अप बिकॉज़ द नाइट इज यंग, और हम भी टेक्निकली यंग ही है.

Welcome back, party people. सरिया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर आप डांस फ्लोर पे हो रिस्पेक्ट, और अगर सोफा पे हो ऑल्सो मोर रिस्पेक्ट। अगर आप दोनों के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे कंग्रेचुलेशंस, यू आर द वीकेंड। क्लब मिर्ची में म्यूजिक कंटिन्यूज।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
2: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
1: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
5: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
4: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
6: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
4: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
7: एक ही होता है।
4: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
0: क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

0: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने। उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
1: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती है तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध वूध ले, सब्जी वब्जी खरीद, ही इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
0: एक विनर और एक सिक्स प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, कल सिर्फ मिर्ची पर।
2: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
3: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey, and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

Welcome back, party people. Club Mirchi जा रही है DJ Richard Mirchi और यों तक आपके साथ. Weekend sunny हो या rainy, party mood sunny तो होना ही है. तो let's hear sunny together.

म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पार्टी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची रेस विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योम्तिका।

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot. आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा टू 9033647244, दैट इज 9033647244।

Welcome back, party people. सरिया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोन का स्टार्टिंग योर वीकेंड। फ्रेंड्स के साथ पार्टी करो, फैमिली के साथ चिल करो या फिर खुद के साथ डेट पे जाओ, बिकॉज हैप्पीनेस को कंपनी की जरूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा म्यूजिक और जीरो जजमेंट चाहिए। दैट इज क्लब मिर्ची। हैव अ ब्यूटीफुल वीकेंड एंड हियर्स द साइन ऑफ ट्रैक। इट्स कॉल्ड स्वीट डिस्पोजिशन। टाटा।

0: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने। उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
1: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमता है, दूध लेने जाता है मुर्शिदाबाद, दूध वूध ले, सब्जी वब्जी खरीद, ही इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम, जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
0: एक विनर और एक सिक्स प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, कल सिर्फ मिर्ची पर।
2: Sureen ke saath, only on Mirchi. It's hot.
3: Ladies and gentlemen.

म्यूजिक लाउड, मूड लाउडर। नेबर्स कंप्लेन करे तो वॉल्यूम कम कर देना, पार्टी नहीं। प्रायोरिटीज पीपल, क्लब मिर्ची डेज विद डीजे रिचर्ड, मिर्ची ऑयोम टेका।

वीकेंड पे ये मेरा दिल किसी को भी दे सकती हूँ मैं, बट क्रेडिट कार्ड नेवर, दैट्स इमोशनली अनअवेलेबल. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची आयोनिका.

हेलो बॉडी पीपल, वेलकम टू क्लब मिर्ची, जहां वीकेंड का मतलब है मंडे की टेंशन को म्यूट और म्यूजिक का फुल वॉल्यूम ऑन करना। चाहे आप डांस फ्लोर पे हो, ट्रैफिक में, या बेड पे हॉरिजॉन्टल होके पार्टी कर रहे हो, टुनाइट वी डोंट जज। वेलकम वंस अगेन टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मी मिर्ची ओयोंधिका। सो लेट्स बिगिन दिस काउंटडाउन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची. वीकेंड ऑफिशियली ऑन है. बस दो चीजें चाहिए, गुड म्यूजिक और वो फ्रेंड जो बोलता है बस एक ड्रिंक और फिर सनराइज देख के ही घर जाता है. कीप द वॉल्यूम अप बिकॉज़ द नाइट इज यंग और हम भी टेक्निकली यंग ही है.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
2: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
1: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, we are gonna go
5: on a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर आप डांस फ्लोर पे हो, रिस्पेक्ट। और अगर सोफा पे हो, ऑल्सो मोर रिस्पेक्ट। अगर आप दोनों के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंग्रेचुलेशंस, यू आर द वीकेंड। क्लब मिर्ची में म्यूजिक कंटिन्यू।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot. आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: Radio Mirchi, it's hot.

0: 쇼인가?
1: 클럽 매치 only on 매치. We'll be right back after these messages. It's hot.
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची. वीकेंड ऑफिशियली ऑन है. बस दो चीजें चाहिए, गुड म्यूजिक और वो फ्रेंड जो बोलता है बस एक ड्रिंक और फिर सनराइज देख के ही घर जाता है. कीप द वॉल्यूम अप बिकॉज़ द नाइट इज यंग. और हम भी टेक्निकली यंग ही है.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा.
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
3: ऑन अ राइड.
0: क्लब मिर्ची.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर आप डांस फ्लोर पे हो रिस्पेक्ट, और अगर सोफा पे हो ऑल्सो मोर रिस्पेक्ट। अगर आप दोनों के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे कंग्रेचुलेशंस, यू आर द वीकेंड। क्लब मिर्ची में म्यूजिक कंटिन्यूज।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's Hot.
1: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
2: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
1: पक्का फाइनल आंसर?
2: फाइनल आंसर।
3: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा 2 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
5: On a ride.

0: का कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब मिर्ची खा।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
1: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
0: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।

92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
2: एक ही होता है।
0: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मैं खत्म तो खेल खत्म। 92.7 FM
1: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची। रेडियो मिर्ची के
4: Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांट्स में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभावपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है कि मेरे पति बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन बहुत लापरवाह भी हैं। उनकी आदतों पर रोज छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं और रिश्ता खराब होता जा रहा है, मैं क्या करूँ?
3: देखो, हर आत्मा के अंदर कुछ अच्छाई होती है और कुछ मना कमियां भी होती हैं। ये ऐसे है कि जैसे साड़ी प्लेन वाइट है पर इस पे कुछ दाग है। अब आपको अपने कॉन्शियसनेस में दाग रखने हैं या उनकी विशेषताएं रखनी है।
2: बहुत बढ़िया।
3: इसका मतलब ये नहीं है कि वो दाग राइट हैं और हम कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जैसी वृत्ति होती है वैसा वाइब्रेशन होता है, वैसा घर का वायुमंडल होता है। तो वृत्ति मना अपने एटीट्यूड में आप उनकी विशेषताएं रखें, आपके वाइब्रेशन में उनके प्रति रिस्पेक्ट रखें और घर के वायुमंडल को पॉजिटिव रखें, और फिर अगर कोई दाग है तो उसके बारे में किसी को इशारा दें। लेकिन अगर वृत्ति में दाग है और वही वाइब्रेशन है और वही कॉन्वर्सेशन है और वही एनवायरमेंट है, तो वो सोल को कमजोर करता है, और कमजोर आत्मा कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकती। तो किसी बात का इशारा देना, इंस्पायर करना, एम्पावर करना अलग है, लेकिन उस पर आर्ग्यू करना, डिबेट करना, कॉन्फ्लिक्ट करना, वो फिर आपके रिश्ते को भी कमजोर कर रहा है और घर के वायुमंडल को भी खराब कर रहा है।
2: और वैसे भी हमको याद रखना है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी आसमान तो कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात शुरू में कही कि बहुत अच्छे इंसान है, तो उस पे ही ध्यान
3: उस पर दे, मतलब कॉन्शियसनेस में वो रखें। ध्यान हमारा कमी पर भी है, लेकिन वो चीज हमारे मन का और वृत्ति का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है, समझो भले,
2: लेकिन उसे अफेक्ट नहीं हो,
3: लेकिन उसको अपनी वृत्ति मतलब एटीट्यूड, क्योंकि जैसा एटीट्यूड होगा वैसा परसेप्शन होगा, जैसा परसेप्शन होगा वैसा एक्शन होगा, जैसा एक्शन होगा वैसा आपकी डेस्टिनी होगी। तो अंदर तक उसको पकड़ के रखेंगे तो आपके व्यवहार में गुस्सा, आपके व्यवहार में रिजेक्शन, वो सब आने लगेगा जो रिश्ते को कमजोर करेगा। तो व्यवहार आपका अच्छा हो और इशारा दें, पेशेंट रहें, एम्पावर करें, बदल जाएंगे, सब बदलने के लिए आए हैं।
2: और खुश रहें कि आपको बुरा इंसान नहीं मिला।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया. आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का. उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी.
3: सिस्टर, एक अनोनिमस सवाल आया है कि मेरी बाई जो है वो बहुत ईमानदार है लेकिन काम में बार बार गलतियां करती है. क्या उसे बार बार माफ कर देना सही है या उससे अब खुलकर बात करनी चाहिए?
4: पहले तो ईमानदार है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है.
3: बिल्कुल,
4: आजकल के समय पर ये जल्दी से मिलती नहीं है. तो उस क्वालिटी के लिए हमारे मन में बहुत रिस्पेक्ट है. लेकिन अगर वो ठीक से काम नहीं करती तो खुल के बात करना बहुत जरूरी है. खुल के बात करें पर गुस्सा नहीं करें. बहुत करके हम बात नहीं करते, उससे बात नहीं करते पर मन में डिस्टर्ब होते रहते हैं.
3: सही.
4: घर में भी सबको बोलते हैं, रेडियो पर भी सवाल भेज रहे हैं जो अच्छी बात है. लेकिन इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट बैठ करके उससे बात करें. फिर अगर आपको उनको रिटेन करना है तो आपको पेशेंट होना पड़ेगा. क्योंकि बात करने से व्यक्ति रियलाइज करता है, इमीडिएट ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता. संस्कार ऑन ऑफ का बटन नहीं है. आप बात करेंगे तो शायद आपको समझेगा कि उसके मन में कोई और बोझ है जिसके कारण उससे केयरलेस मिस्टेक्स हो रही हैं. आप बात करें, उसको एम्पावर करें, उसको हेल्प करें, पर आपके पास वो धैर्यता का गुण होना चाहिए.
3: सही बात, बहुत बढ़िया.
4: और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और ये उसका पैटर्न है और वो बदलना ही नहीं चाहते, और फिर अगर आप किसी को चेंज भी करना चाहते हैं तो वो ओके है. लेकिन ट्राई जरूर करना चाहिए.
3: बेसिकली आप जो कह रही हैं वो कबीर बहुत साल पहले कह के गए हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए. तो गुस्सा नहीं करना, आराम से पेशेंट से बात करिए, हल जरूर मिलेगा.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, शाम कनाई ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, क्या जरूरत से ज्यादा सोना डिप्रेशन की निशानी हो सकता है?
3: कुड बी वन ऑफ द रीजन, पर अभी देखो फिर भी ये किसी के लिए कहना डिफिकल्ट है। पहले तो जरूरत से ज्यादा सोना कितना है वो भी डिपेंड करता है।
2: हम जूम ही 10 घंटों से ज्यादा ही बोल रहे होंगे।
3: कभी कभी किसी का फिजिकल लेबर होता है,
2: हाँ, तो थकावट ज्यादा होती
3: है। तो थकावट ज्यादा भी हो सकती है। कभी कभी बच्चे हैं, ज्यादा भी सोते हैं, लेकिन अगर उनको फील हो रहा है कि वो पहले कम सोते थे,
2: हाँ,
3: और अभी ज्यादा सो रहे हैं, तो डिप्रेशन के बहुत सारे और भी सिम्टम्स होते हैं, सिर्फ ज्यादा सोना ही नहीं होता। उसमें मेन चीज तो ये है कि आप उदास हैं। आप जो फर्स्ट फैक्टर आपके अंदर होना चाहिए, और वो उदासी लंबा समय चलती है। हम सब कई बार उदास होते हैं, बाउंस बैक कर जाते हैं, लेकिन ये उदासी से आप बाउंस बैक ही नहीं कर पा रहे होते। आप उदास हैं, किसी से मिलने के दिल नहीं है, कुछ काम करने के दिल नहीं है, तो वो फिर धीरे धीरे जब मन बहुत थकता है तो तन भी ज्यादा थकता है। आपको उठने की दिल ही नहीं होती, आपको किसी से मिलने की दिल ही नहीं होती। सो इट कुड बी वन ऑफ द फैक्टर, बट फिर भी आप डॉक्टर से राय करेंगे तो बेटर है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Proximity को greatness क्यों समझ लेते हैं हम? आइए इसे समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: सिस्टर, हाल फिलहाल में ना मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक पार्टी में बुलाया और मैं गया तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ बहुत सारे दिग्गज लोग आने वाले हैं. तो एक वहाँ पे इंसान था, बहुत उसने हाल फिलहाल में बम्बई आके एक OTT शो भी किया और एक बहुत ही बड़े लेजेंड के साथ उसने काम किया. तो उनसे पूछ रहे थे कि भाई आपके लिए आपकी सबसे बड़ी अकम्प्लिशमेंट क्या है. तो उन्होंने कहा कि मैंने सो एंड सो लेजेंड के साथ काम किया और उनके साथ मेरी फोटो है. तो एक सज्जन पास में खड़े थे, उन्होंने कहा इसमें अकम्प्लिशमेंट कहाँ है, ये तो उनका बड़प्पन है कि उन्होंने आपके साथ फोटो खिंचवा ली. तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि प्रॉक्सिमिटी टू ग्रेटनेस जब होता है ना, हम उसी को अकम्प्लिशमेंट मान लेते हैं. हमने जो काम किया है या हमारी जो जर्नी है उस पर ध्यान नहीं देते. तो आपके लिए एक्चुअली सक्सेस का यार्डस्टिक इस केस में क्या है?
4: आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक है किसी से इंटिमिडेट होना, एक है उतने कोई ग्रेटनेस फील करना कि आप उनके साथ फोटो खिंचवा सके, और एक है कि शायद आपके पास कोई फोटो नहीं है किसी के साथ. पर हर व्यक्ति जो अपनी फील्ड में महान है, ग्रेट है, उसकी क्या कारण है जिसके कारण वो ग्रेट है,
3: उसको समझना.
4: हर सफल व्यक्ति की कोई तो विशेषताएं होती हैं. कई बार हम बाद में देखते हैं या जब उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे या कभी इंटरव्यू सुनते हैं, देयर इज सम स्पेशलिटी, देयर इज सम क्वालिटी दैट हैज अलाउड देम टू बी सो ग्रेट. हार्डवर्क हो सकता है, सिंसेरिटी है, ह्यूमिलिटी है. उन चीजों को समझना, उनको अपने जीवन में अक्वायर करना, एम्यूलेट करना उनको. हम उनको इमिटेट भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन चीजों को एम्यूलेट करना, आई थिंक दैट इज ट्रू ग्रेटनेस.
3: ये बिल्कुल सही कह रही हैं सिस्टर, लेकिन कई बार क्या होता है, आम इंसान भी होते हैं ना, जैसे बहुत लोग हैं उनको लगता है अरे तुम शबाना आजमी के साथ काम कर रहे हो, अरे तुमने नसीर साहब के साथ काम किया, अनुपम खेर बच्चन साहब के साथ काम किया, तो नवाज उद्दीन सिद्दीकी साथ तुमने एक फिल्म की है, तो हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है.
4: नहीं, वो तो बड़ी बात है ही ना, आप काम कर रहे हैं. एक है सिर्फ फोटो खिंचवाना, एक है आप किसी अकम्प्लिश्ड एक्टर के साथ अगर काम कर रहे हैं तो इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग कि आप भी किसी लेवल तक तो अकम्प्लिश्ड होंगे ना, फॉर यू टू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम. तो उस चीज का शुक्रिया होना चाहिए, ह्यूमिलिटी भी होनी चाहिए, ईगो नहीं आनी चाहिए.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने, उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह. आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है. लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी.
6: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें. बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध ले सब्जी वब्जी खरीद, ही इज अनबिलीवेबल. कभी भी उससे बात होती है सेम, जैसा वो तब था वैसा ही आज भी.
5: एक विनर और एक सिक्स्थ प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई. सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, आज सिर्फ मिर्ची पर.
0: Only on Mirchi. It's hot.

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
1: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
2: Har pyari bride ka ye sapna pura kare Miss India Bridal Store.
1: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
2: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
1: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islington.
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
7: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या किसी बड़े नाम से ना जुड़ पाने की वजह से आप अपनी कला पर डाउट कर रहे हैं? तो ये जरूर सुनिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: हमको लगता है कि कभी कभी आम इंसान की नजर में, जैसे अगर मैं एवरेज इंसान हूँ, हमारे लिए उसकी कला जो है उसका वैलिडेशन तभी होता है जब वो इन नामों के साथ जुड़ता है। वो कह रहा है मैं तो 20 साल से थिएटर कर रहा हूँ यार, तुमने तो आज तक मेरी वाहवाही नहीं की। तो ये जो है, अगर मैं परसेप्शन चेंज करने जाऊं, अनलेस मैं किसी बड़े नाम के साथ जोड़ा नहीं जाऊं, मेरी कला की कोई पहचान नहीं करता।
4: देखो, जितने लोग हैं वो जिस बेस पर वैलिडेशन देते हैं वो हर एक का अलग अलग होता है। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट एवरी पर्सन। कोई कला की वैल्यू करता है, कोई ये चीज की वैल्यू करता है कि आपके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं।
3: जी,
4: अभी ये भी एक अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि कला आपके पास है कि नहीं,
3: उससे फर्क नहीं पड़ता,
4: उससे फर्क
3: फॉलोअर्स होने चाहिए,
4: फॉलोअर्स आपके कितने हैं। कोई ये चीज से वैलिडेट करता है कि आपने कितने बड़ों बड़ों के साथ काम किया। अब सबका क्या वैलिडेट करने का तरीका है या उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो तो जितने लोग हैं उतने अलग हैं। इम्पोर्टेंट ये है आप अपने को किस चीज से वैलिडेट करते हैं, आप अपने को किस चीज से रिस्पेक्ट करते हैं, कला से या सिर्फ इसलिए कि हमने किसी के साथ फोटो खिंचवा ली। दैट इज ओनली इन आर कंट्रोल। बाकी सबके पर्सपेक्टिव तो हम बदल नहीं सकते। और मुझे ये भी लगता है जैसे आप होते हैं आप वैसे ही रहें तो सूनर और लेटर जिस प्रकार के लोगों को आप पसंद करते हैं आप मिल जाएंगे। यू विल अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ पीपल। समटाइम्स क्या होता है, हम फिर चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ शेड ऑफ ग्रीन एंड यू आर द बेस्ट शेड ऑफ ग्रीन, पर अगर किसी को ब्लू पसंद है
3: तो क्या ही कर सकते हैं आप?
4: You'll be never good enough for them.
3: Right, absolutely.
4: फिर आप थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएंगे कि मैं ग्रीन से थोड़ा सा ब्लू हूँ, और उसमें आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा बिकॉज दैट मे नॉट बी ट्रू टू योर प्रिंसिपल्स और वैल्यूज या आपके जीवन जीने का तरीका। इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप वो शेड ऑफ ग्रीन रहें और थोड़ा सा पेशेंट रहें, सो somebody who's looking for you
3: will come to you,
4: will find you and will value you also.
3: Very nice.
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.

0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
2: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलोअप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
0: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155। सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। दिलीप सिंह चौहान हैं, जयपुर से लिखते हैं कि व्हाट इज द ट्रू कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। सही कॉन्सेप्ट क्या है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे लाएं अपनी जिंदगी में?
2: वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? एक्चुअली वर्क लाइफ बैलेंस एक बेसिकली आप एक एलिवेटेड स्टेज में जाकर के सब कर्म कर सकते हैं। आप अगर कहें, फॉर एग्जांपल मैं उनको कह भी दूं कि वर्क लाइफ बैलेंस में आप जितना समय वर्क पर देते हैं उतना समय आप घर पर दें, बट आई डोंट नो व्हाट हिज प्रोफाइल जॉब है।
1: बिल्कुल,
2: आज कोई मिलिट्री में है,
1: वो नहीं पाता।
2: आज कोई सर्जन है, उसको अचानक रात को भी उठ करके जाना पड़ता है। तो आपका अगर वो वर्क है और प्रोफेशन और वो डिमांड करता है, किसी का 8 घंटे करता है, किसी का 12 घंटे करता है, किसी का 6 घंटे भी करता, 6 महीने भी करता है, दे डोंट मीट देयर फैमिलीज फॉर 6 मंथ्स ऑल्सो, लेकिन जितना समय आप हैं उनके साथ, पहली चीज अगर आप ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो करें। कहाँ आप कट कर सकते हैं, कहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है? आजकल सोशल मीडिया बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। तो जो आप कट कर सकते हैं, इनकेस इफ यू कैन स्पेंड मोर टाइम, डू इट, दैट इज वन। सेकेंड, अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है तो छोड़ दें, गिल्ट में नहीं जाएं।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात।
2: नहीं जाएं गिल्ट में, अगर आपका वर्क डिमांडिंग है, वो आपको करना ही है, तो उस ऑप्शन को खत्म कर दें, अपने मन से गिल्ट को निकाल दें। अगर आप 2 ही घंटे अपने बच्चे के साथ, फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, मेक इट क्वालिटी।
1: मेंटली प्रेजेंट रहिए, सिर्फ फिजिकली नहीं,
2: मेंटली प्रेजेंट रहिए। उस समय पर भी मेल्स चेक कर रहे हैं या वर्क प्लेस पर हैं या आई कॉन्टैक्ट नहीं है, जो छोटी छोटी चीजें हमें पता है, बहुत समय नहीं चाहिए होता, क्वालिटी टाइम चाहिए होता।
1: बिल्कुल, बहुत सही।
2: थर्ड, आप अगर नहीं भी है, सो फैमिली के साथ हमारा जो कनेक्शन है ना, इट इज नॉट ओनली फिजिकल, इट इज वाइब्रेशनल ऑल्सो। तो समझो आज बच्चे का एग्जाम है, आप उसके लिए फिजिकली वहां पर नहीं है, लेकिन एट अ वाइब्रेशनल लेवल ऑल्सो आप सोचते हैं कि उसका बहुत अच्छा होगा।
1: बिल्कुल,
2: वो सफल होगा, आई एम देयर फॉर यू। आप 1 मिनट ही बात करते हैं उसके साथ और कहते हैं बहुत अच्छा होगा, मुझे पता है आपने सफल होना है, दैट विल ऑल्सो एम्पावर योर चाइल्ड। कई बार उनको टाइम नहीं चाहिए होता, पावर चाहिए होती।
1: सही बात,
2: आप कहीं से भी दे सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया।
2: आप मीटिंग में बैठे हैं लेकिन आप सोचे जा रहे हैं, एज अ मदर आप गिल्ट में जा रहे हैं, आई कांट गिव टाइम टू माई चाइल्ड, मैं समय नहीं दे पाती, उसका एग्जाम है। वो जो कहते हैं ना, हर मदर को एक गिल्ट ट्रिप होती है। नहीं करें, या तो छोड़ दें जो आप कर रहे हैं, या आप नहीं छोड़ सकते तो अपनी कॉन्शियसनेस को इतना एलिवेट कर लें कि आपका वाइब्रेशन भी उनको एम्पावर करे,
1: पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजें।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: Type C cable के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, only on मिर्ची, it's hot.

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। अभिषेक सेठिया पूछते हैं कि भाई मैं रेगुलरली कैसे पढ़ाई करूं, शायद मेरा मन भटकता, ध्यान नहीं लगा पाते वो।
2: शॉर्ट टर्म गोल्स बनाए, अपनी कैपेसिटी को देख करके गोल्स बनाए और डिटर्मिंड रहे। हमारा मन थोड़ा सा क्या करता है, अपने से प्रॉमिस करता है, बहुत अच्छा प्रॉमिस करता है, ऑनेस्टली प्रॉमिस करता है कि मैं रोज पढ़ूंगा, लेकिन जिस चीज की कमी होती है वो है डिटर्मिनेशन।
1: बिल्कुल,
2: मैं कई बार कहती हूँ डिटर्मिनेशन इज लाइक, आपने प्रॉमिस किया, इट्स लाइक सोइंग अ सीड, फिर उसको रोज पानी देना पड़ता है।
1: बहुत जरूरी।
2: तो डिटर्मिनेशन क्या है, अपने को याद दिलाना कि रोज पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि दिस विल ब्रिंग गुड मार्क्स, विल लीड टू गुड कॉलेज, विल लीड टू माय ड्रीम जॉब। तो अपने को आप मोटिवेट करें और ऐसा गोल बनाएं जो अचीवेबल हो। ऐसा गोल कई बार हम बना लेते हैं जो
1: 6 घंटे पढ़ूंगा, मैं सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, कभी कभी नहीं होता है। अपने आपको बोलो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा
2: कैपेसिटी से बनाए, चाहे कोई 18 घंटे भी पढ़ा है, लेकिन आप अपनी कैपेसिटी को देखें। 2 घंटे से शुरू करें, 1 घंटे से शुरू करें। आप जब उसको अचीव करेंगे, जब हम छोटा गोल बनाते हैं और हम उसको अचीव करते हैं, तो हमें खुशी मिलती है।
1: तो फिर अपने आप,
2: फिर वो खुशी हमें अपने आप मोटिवेट करती है और हम अपने छोटे गोल से लार्जर गोल्स को अचीव कर पाते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

0: करियर में एक पॉइंट ऐसा आता है जब हार्डवर्क के साथ रीपोजिशनिंग भी ना जरूरी हो जाती है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। एंड वेन एवर वी हियर अबाउट ले ऑफ्स, AI, टेक्नोलॉजी चेंजेस एंड इवन यंगर कलीग्स मूविंग फास्ट, कभी कभी ना नेचुरली एक सवाल आ ही जाता है, एम आई स्टिल रेलिवेंट? और अगर ये सवाल आपके भी माइंड में कभी आया है, देन न्यू जर्सी मार्क दिस डेट, September 27, बिकॉज कमिंग टू शेरेटन एडिसन आर 4-time TEDx स्पीकर्स, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स एंड मल्टी अवार्ड विनिंग करियर कोचेस शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठ, ब्रिंगिंग इन देयर इन पर्सन करियर ग्रोथ वर्कशॉप्स टू न्यू जर्सी। दे हैव हेल्प 1500+ मिड करियर प्रोफेशनल्स एक्सेलरेट प्रमोशन, गेट डबल प्रमोशन, इम्प्रूव विजिबिलिटी, स्ट्रेंथन लीडरशिप प्रेजेंस, अट्रैक्ट बिगर अपॉर्चुनिटीज एंड इवन अचीव 50-180% सैलरी रेजेस। दिस वर्कशॉप इज डिजाइन टू हेल्प यू रिवाइटलाइज योर करियर, रिपोजिशन योर वैल्यू एंड मूव फॉरवर्ड विथ मोर क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। सो आज ही रजिस्टर कीजिए एट playitful.com/nj, दैट्स playitful.com/nj। और अब नेक्स्ट लेवल करियर एनर्जी के लिए नेक्स्ट लेवल गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
5: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS, NMLSID 2108069।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कम्प्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
10: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
12: Honey, it's 11 PM, our bedtime. Where are you?
13: I am not going to bed with you ever again.
12: But why? What did I do?
13: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
12: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
13: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
12: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
13: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
12: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
17: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
16: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
17: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
16: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बाप्पा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Jai Gurudev. अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा
7: 13 सप्टेम्बर रविवार
6: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
10: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
9: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
11: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 21।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
3: Sneakers, Kanjivaram sari, or wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
5: फ्री एंट्री, वन डे, वन प्लेस, अ होल लॉट ऑफ फन. इट्स फॉल फन फेस्ट एंड एवरीवन्स इनवाइटेड. फीस्ट ऑन योर फेवरेट्स, देन लाफ टिल इट हर्ट्स विद आवर ओन स्टैंड अप कॉमेडियन द विष्णु वाका, और लूज योरसेल्फ इन सुनीता कपूर्स मेलोडीज. फील द रिदम विद अ जुगलबंदी बाय लेजेंडरी विंसेंट पियर्स स्मिथ एंड प्रसाद Joshi, light of the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
6: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
7: to aaiye Fashion Queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
6: Shaadi shopping ka complete destination, Fashion Queen.
7: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
8: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है.
9: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में.
8: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट.
10: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे. टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069.
11: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
12: बैक टू बैक गाना सुनेगा.
11: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने। उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
2: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेके जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध दूध ले सब्जी वब्जी खरीद, ही इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
1: एक विनर और एक सिक्स्थ प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, आज सिर्फ मिर्ची पर।
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एंड ए कॉन्कॉर्ड कैलिफोर्निया।
1: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
2: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
1: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
3: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
5: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Iselin।
6: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
7: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
6: Wait, they can see us on Sunday?
7: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
6: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
7: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
8: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।

0: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने। उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
1: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध वूध ले, सब्जी वब्जी खरीदते, इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
0: एक विनर और एक सिक्स प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, आज सिर्फ मिर्ची पर।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
11: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugal Bandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
5: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
12: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey, and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

0: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने। उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
1: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध ले सब्जी वब्जी खरीदते, इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
0: एक विनर और एक सिक्स्थ प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, आज सिर्फ मिर्ची पर।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: वॉरिड अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
7: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
6: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: इनएफिशिएंट, वेरी कॉम्प्लेक्स,
9: क्लमजी और
8: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन।
4: डिसजॉइंटेड सॉफ्टवेयर को यूज करना उतना इजी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ, अपने बिजनेस के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट, यू कैन रन योर एंटायर बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग से लेके कस्टमर सपोर्ट, अकाउंटिंग, ऑपरेशंस या HR। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Listener MA, back to back gana sunega.
14: Back to back gana sunega.
13: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La virpa, la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: हेलो मुकेश जी
1: कौन
2: मुकेश जी मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ राणा मोटर से। आपने जो 1000 दी थी ना उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई।
2: हाँ वो नहीं हो पाया सर।
1: हाँ नहीं हो पाया
2: सर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा सर आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की।
1: हाँ
2: सर वो भी हो नहीं पाई है वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी।
1: नहीं क्या नहीं पाया तुम्हारे यार रोज के तुम्हारे जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया क्या मजाक ही क्या है ये।
2: नहीं मुकेश जी मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई।
2: नहीं नहीं आप सही कह रहे हैं। अच्छा मुकेश जी आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है ब्रेक काम नहीं कर रहे। सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा।
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर वो
1: ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया मुझे फोन करना है मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया।
2: नहीं सर
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे।
2: नहीं सर कुछ हो नहीं पाया।
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी
1: है।
2: सर रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी।
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या।
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ मतलब हम
1: क्या करा दूँ
2: सर मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की।
1: कैसी FIR दिमाग खराब हो गया तेरा पागल तो नहीं है तू।
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम।
1: गुस्सा ना करूँ नई गाड़ी थी हमारी।
2: नहीं सर आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया उसमें हमने पेट्रोल डाला है।
1: ग्रीस कितने का 5 रुपए का लगाया। आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में तुम्हारे वर्कशॉप में।
2: अच्छा
1: मुझे चाहिए अपनी वापस।
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR कराने की।
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें। अच्छा सर ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा।
3: मुकेश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा।
1: तो जान निकाल दी हमारी।
3: मुकेश आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे। मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए गुस्सा खत्म करिए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: गुड मॉर्निंग सांभळी रह्या छो मिर्ची हूँ छो कृतार्थ। चलो हूँ तुमने एक सरस मजानी वार्ता को। एक शहर मा पहली वक्त मॉल खुल्यो एटले दरेक ने एक्साइटमेंट हतु। अबे शहर मा जेने एक साधु महात्मा रहता हता एमना चेलाओ एमनी पासे गया ने एमने कह्यु के अरे महाराज चालो अमारी साथे शहर मा एक नवो मॉल खुल्यो छे મારે તમને બતાવવા માટે લઈ જવો છે કે જુઓ તો ખરા કે દુનિયામાં કેવું કેવું હોય કેવી કેવી વસ્તુઓ મળે અમે લોકો તો જોઈને આવ્યા ગઈકાલે તમે ચાલો। એમને કહ્યું કે ઠીક છે ચેલાઓ કહે છે તો જઈને જોઈએ કઈક તો હશે। એ જ્યારે ગયા આખો મોલ જોયો ફર્યા બધી જ દુકાનો એક્સપ્લોર કરી એક એક સામાન ઉચકીને જોયો એના પછી ચેલાઓએ પૂછ્યું કે મહારાજ કેવું લાગ્યું મજા પડી ને કઈક નવું જોવા માટે મળ્યું ને। તો કે હા યાર મજા તો પડી બટ હું એ વાત જાણીને બહુ જ ખુશ છું કે દુનિયામાં એવી કેટલી બધી વસ્તુઓ છે કે જેના વગર હું ખુશ છું। આ વાત ધ્યાનથી સાંભળજો કે દુનિયામાં કેટલી બધી એવી વસ્તુઓ છે કે જેના વગર પણ મને ચાલી જાય છે। હમણાં સુધી આમાંની એક પણ આઈટમ મારા નાનકડા ઘરમાં મંદિરમાં છે જ નહીં એના છતાંય મારું જીવન કેટલું સરસ ચાલે છે। યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી હું છું તમારો કૃતાર્થ। ગુડ મોર્નિંગ હોપફુલી આ વાતથી તમને કંઈક સમજાય।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं आरके ज्वेल्स चलिए इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
11: फ्री एंट्री वन डे वन प्लेस अ होल लॉट ऑफ फन इट्स फॉल फन फेस्ट एंड एवरीवन्स इनवाइटेड। फीस्ट ऑन योर फेवरेट्स देन लाफ टिल इट हर्ट्स विद आवर ओन स्टैंड अप कॉमेडियन द विष्णु वाका और लूज योरसेल्फ इन सुनीता कपूर्स मेलोडीज। फील द रिदम विद अ जुगलबंदी बाय लेजेंडरी विंसेंट पियर्स स्मिथ एंड प्रसाद Joshi, light of the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
12: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
13: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding.

0: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने। उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
1: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती है तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध ले सब्जी वब्जी खरीद, इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम, जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
0: एक विनर और एक सिक्स प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, आज सिर्फ मिर्ची पर।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: तुमने डर लागे? लागे ने, बधाने डर लागे, मने पण लागे। कया कया प्रकारना डर लागता होय छे मने अने तमने? तो के गाड़ी लेने निकड़ा हो ने सामे जो पोलिस देखाई जाए तो ये डर के लाइसेंस छे, पीयूसी छे, रजिस्ट्रेशन ना कागड़िया छे, पण छता ए ए मने पकड़ी ले, का तो खखड़ावी नाखे, का तो तकलीफ में मुकी दे, तो एनो डर। ऑफिस में डर के जो हूँ बॉस ना सामे मने जे फील थाय छे ए बोली दऊ अने मने खखड़ावी नाखे तो, मारी इंसल्ट करी नाखे तो, का तो पछी जॉब माथी ज काढ़ी नाखे तो, एनो डर। મારી ઈએમઆઈ હું આ મહિને ના ભરી શક્યો તો, ક્રેડિટ કાર્ડની જેટલી લિમિટ છે એના 80% પૈસા જો હું વાપરી નાખું ભૂલ ભૂલમાં તો, અચાનક ઘરનો કોઈ ખર્ચો આવી જાય તો, બાળકોની સ્કૂલ ફીસ જો વધારી નાખે સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ અને મારે સ્કૂલ ચેન્જ કરવાની આવે તો હું શું કરીશ? આ બધા જ પ્રકારના ડર મને અને તમને સતાવતા હોય છે। આ બધા મેન મેડ ડર છે, મનુષ્યએ જે સિસ્ટમ ક્રિએટ કરી છે એમાંથી ઉપજેલા બધા ડર છે। ડર ખરેખર કઈ વસ્તુનો હોવો જોઈએ જે આપણને છે જ નહીં? એ છે કુદરતનો ડર। કુદરતનો ડર કેવો? તો કે હું જો ઝાડ કાપીશ તો પછી આ 40 ડિગ્રી, 45 ડિગ્રી, 52 ડિગ્રી આ બધું નોર્મલ થઈ જશે, મારાથી જીવાય નહીં, આવનારી જનરેશન્સ એ પોતાની નેચરલ લાઈફ પૂરી કરી શકશે કે નહીં કરી શકે એની કોઈ ગેરંટી નથી। આ એક ડર। હું સમુદ્રમાં જો કચરો કરીશ તો સુનામી રૂપી મારા શહેરનો કચરો સમુદ્ર એક દિવસ કરી નાખશે, એનો ડર। હું જો ખુલ્લેઆમ કચરો બાળીશ તો પછી જે લંગ્સ છે દુનિયાના એમાં આગ લાગશે, જંગલોમાં આગ લાગશે અને હું શ્વાસ નહીં લઈ શકું, આ ડર। પણ આમાંનો કોઈ પણ ડર આપણને સતાવતો નથી। આજે સવાર સવારમાં હું તમારી સામે એક બહુ જ પાવરફુલ થોટ મૂકવા માટે જઈ રહ્યો છું। જે પણ ડર તમને કરન્ટલી સતાવી રહ્યો છે એ મેન મેડ ડર છે, એ તમે કાં તો પોતાની કલ્પના શક્તિનો ઉપયોગ કરીને ઊભો કરેલો છે, કાં તો પછી તમે પોતાના આસપાસ જે પોતાની નાનકડી દુનિયા બનાવેલી છે એનો ડર છે। ખરો ડર એ કુદરતનો હોવો જોઈએ, પોતાના કર્મોનો હોવો જોઈએ કે હું જો આ પ્રકારે કોઈને તકલીફ પહોંચાડીશ તો પછી મને પણ ફ્યુચરમાં તકલીફ થશે। આ બે વિષયને છોડીને તમારા મનમાં બાકી કોઈ પણ વ્યક્તિ કા તો સિચ્યુએશનનો ડર ના હોવો જોઈએ। જો છે તો પછી વિચાર કરો એના ઉપર કે મારી વાત સાચી છે કે નહીં। યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી, વિશિંગ યુ અ ડર મુક્ત દિવસ, ડર મુક્ત જિંદગી। યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી, ઇટ્સ હોટ, ગુડ મોર્નિંગ।
2: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
4: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
2: पक्का फाइनल आंसर?
4: फाइनल आंसर।
5: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
6: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: ओ नो।
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
11: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
14: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
15: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।

0: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने। उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
1: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध वूध ले, सब्जी वब्जी खरीदती, इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम, जैसा वो तब था वैसे ही आज भी।
0: एक विनर और एक सिक्स्थ प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, आज सिर्फ मिर्ची पर।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
3: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
2: Wait, they can see us on Sunday?
3: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
2: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: Batting to kaafi saare karte hain. Virat ek hi hota hai.
9: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
8: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
10: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
12: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mir-

0: Nerdy. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na viva la burga.
1: Nerdy, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई है ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर, जो आप बोले हैं दाए को मुड़ने के लिए, जब दाए मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनुआ बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, और बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धोलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
2: नहीं वो? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
3: मेरी बात है, चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो, हेलो हेलो हेलो हेलो, चारू मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया, आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा यार रिक्शा, तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊंगी।
3: नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Jai Gurudev. અવસર આવીને ઉભો છા આંગણે, ચલો ભેગા મળી ગણેશજીના આગમનની તૈયારી કરીએ આપણે। ગાયત્રી ચેતના સેન્ટરના ગણેશ ઉત્સવમાં જોડાયો, જેમાં
7: 13 સપ્ટેમ્બર રવિવાર
6: સાંજે 4 વાગે થશે ગણેશ સ્થાપના, અને સાંજે 7 વાગે થશે ગણેશ આરતી, અને 20 સપ્ટેમ્બર સાંજે 4 વાગે વિસર્જન। વધુ માહિતી માટે કોલ ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર, વિસ્કાટવે ઓન 732-357-8200। જય ગુરુદેવ।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: फ्री एंट्री, वन डे वन प्लेस, अ होल लॉट ऑफ फन, इट्स फॉल फन फेस्ट एंड एवरीवन इज इनवाइटेड, फीस्ट ऑन योर फेवरेट्स देन लाफ टिल इट हर्ट्स विद आवर ओन स्टैंड अप कॉमेडियन द विष्णु वाका, और लूज योरसेल्फ इन सुनीता कपूर्स मेलोडीज, फील द रिदम विद अ जुगलबंदी बाय लेजेंडरी विंसेंट पियर्स स्मिथ एंड प्रसाद Joshi, light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show, and the little ones, a dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar, September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं, ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो। मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बप्पा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
7: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
6: Wait, they can see us on Sunday?
7: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
6: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
9: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
10: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर, और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अफसर भी है।
11: संडे सितंबर 27th 4 PM, जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर, ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com।
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality.

0: quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
2: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने। उस शो का नाम फेम गुरुकुल और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
3: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती है तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें।
4: बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध ले सब्जी वब्जी खरीद, ही इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
2: एक विनर और एक सिक्स्थ प्लेस कंटेस्टेंट और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, आज सिर्फ मिर्ची पर।
5: Sureen ke saath, only on Mirchi. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: वॉरिड अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
7: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
6: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने। उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
1: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध ले सब्जी वब्जी खरीद, ही इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम, जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
0: एक विनर और एक सिक्स्थ प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, आज सिर्फ मिर्ची पर।
2: सुरेन के साथ only on Mirchi, it's hot.
3: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in...
3: कुछ तो बदल गया है बॉलीवुड में। पहले फिल्म में सुपरस्टार हो तो एक्साइटमेंट अपने आप आ जाती थी, बड़ी फिल्म हो तो थिएटर जाना ऑलमोस्ट कंपलसरी था। लेकिन आज नाम बड़ा हो सकता है, फिल्म को फिर भी खुद को प्रूव करना पड़ता है। शायद बॉलीवुड बदला है, लेकिन मुझे लगता है असली बदलाव हम में आया है। हम सब अब सिर्फ स्टार्स को नहीं देखते, सिर्फ स्केल से इंप्रेस नहीं होते, सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पर टिकट नहीं खरीदते। हम डिसाइड करते हैं कि क्या देखना है, क्या सुनना है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है। शायद इसलिए बॉलीवुड को समझने का सबसे ऑनेस्ट तरीका उसकी अनाउंसमेंट्स नहीं, उसकी ऑडियंस को सुनना है, और हम वही करने वाले हैं। हाय, दिस इज द मिर्ची टॉप 20। माय नेम इज सुरेन सुंदरम एंड शुरू करते हैं उस गाने से जो एक सिंपल बात याद दिलाता है। हाइप खत्म हो जाती है लेकिन म्यूजिक रह जाता है। शान एंड सुखविंदर सिंह की आवाज में दी ओजीज, दिस इज हैवान का गाना रंगियारा, कंपोज बाय प्रीतम दा एंड इट्स द फर्स्ट सॉन्ग हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20।
4: नंबर 20।

कभी नोटिस किया है, कुछ गाने एक ही दुनिया के नहीं लगते। माशूका को जरा ध्यान से सुनो, एक साइड पर मेलेडी है और दूसरी तरफ देयर इज दिस प्रोडक्शन, दोनों की लैंग्वेजेस काफी अलग है, फिर भी गाना एक ही आइडेंटिटी रखता है। इसे कहते हैं जॉनर हाइब्रिड। सिंपल भाषा में मेलेडी एक दुनिया से होती है और बीट दूसरी दुनिया से, और जब दोनों सही हाथ में मिलते हैं तो तीसरी दुनिया पैदा हो जाती है।

तुमियों में मेलोडी एक हिंदी गजल की तरह दिल से निकलती है और पीछे पियानो और स्ट्रिंग्स उस इमोशन को ऑलमोस्ट एक वेस्टर्न क्लासिकल स्केल दे देते हैं। एक तीसरा गाना भी है ये आपको अच्छी तरह मालूम है।

0: चन्ना मेरेया, सूफी मेलेडी, उर्दू अल्फाज, लेकिन गिटार और ड्रम्स उस हार्ट ब्रेक को आगे ढकेल रहे हैं। यानी जॉनर बदल रहा है, इमोशन नहीं। और अब विशाल मिश्रा इसी गेम को और ज्यादा तोड़ रहे हैं। अ सोलफुल हिंदी मेलेडी, बट इट्स गॉट ईडीएम, इट्स गॉट डबस्टेप, इट्स गॉट रैप, यानी कि तीन अलग अलग म्यूजिकल वर्ल्ड्स एक ही गाने में। जॉनर की बाउंड्रीज म्यूजिशियन बनाते हैं, म्यूजिक खुद नहीं। ये है वक्त फ्रॉम द फिल्म टॉक्सिक, नंबर 18 पर डेब्यू विशाल मिश्रा और कौशल किशोर की कोलैबोरेशन।
1: नंबर 18।

0: ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हेलो
2: दिमाग खराब कर रखा है रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई।
1: हाँ जी
2: यार कमाल कर दिया आपने जो फोटो खींचा थे मेरे बेटे की शादी के सारी एल्बम आ गई है क्या फोटो खींचे यार दिमाग खराब कर दिया।
1: क्यों सर जी क्या हो गया फोटो में?
2: अरे फोटो आकर देख यार यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है सबके फोटो अजीब से आए यार सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने मेरा दिमाग खराब।
1: फोटो तो बहुत अच्छा है। क्या
2: फोटो बहुत अच्छा है सतीश चंद का एक बटन उसकी शादी के फोटो बिखा दिया यार सारे दिमाग
1: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो बहुत।
2: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ मतलब मैं पागल हूँ आपने एल्बम देखी है एल्बम देखी है
1: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर बेहतरीन आप देखिए एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
2: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
1: अरे शर्म की क्या बात है सर
2: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार तूने किया क्या ये
1: किसी
2: का कपड़े गायब है एक आदमी का मैं खड़ा हूँ अजीब सा लग रहा हूँ यार मैं
1: लगाया नहीं
2: क्या कौन सा लेंस लगाया एक तो बता ये बदमाशी करते हो कपड़े
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं
2: मैं कल को
1: फोटो खींचे
2: अरे लेंस ऐसे
1: पूरे
2: कपड़े कौन से मैंने शेरवानी पहना की थी शेरवानी गायब है अंदर से सब दिख रहा है यार शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी
1: अरे
2: मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे
1: नहीं साहब देखिए केस वेस की बात मत कीजिए इसने हमारा नाम है इलाके में।
2: अरे हमारा भी कुछ था अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे
1: हैं सर क्या बात चुन के बनाया है
2: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया मेरा बेटा खड़ा है कपड़े नहीं है बहू उसका चलो छोड़ो मैंने देखा भी नहीं है वो खड़ा है जितने बराती आया सबके कपड़े गायब है ऐसा लग रहा है यार पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
1: अरे नहीं सर कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे
2: गड़बड़
1: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम ऐसी कोई बात नहीं
2: यार इतना बुरा लग रहा है हर आदमी के प्लेट में हर आदमी के हाथ में प्लेट है कपड़े है भी
1: दिखाइए
2: आपका कपड़े कैसे आप उसको सही करिए यार
1: सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए
2: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है
1: कहाँ होता है बताइए।
3: रेडियो मिर्ची 98.3 एफएम पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए इसीलिए लायन मॉर्गेज The king of mortgage industry.
8: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
6: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं आर के ज्वेल्स चलिए इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आर के ज्वेल्स। आर के ज्वेल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
10: फ्री एंट्री वन डे वन प्लेस अ होल लॉट ऑफ फन इट्स फॉल फन फेस्ट एंड एवरीवन्स इनवाइटेड फीस्ट ऑन योर फेवरेट्स देन लाफ टिल इट हर्ट्स विद आवर ओन स्टैंड अप कॉमेडियन द विष्णु वाका और लूज योरसेल्फ इन सुनीता कपूर्स मेलोडीज फील द रिदम विद अ जुगलबंदी बाय लेजेंडरी विंसेंट पियर्स स्मिथ एंड प्रसाद Joshi, light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: गणपति बप्पा आते ही एक ही फीलिंग होती है नई शुरुआत की ऑब्स्टेकल्स हटाने की और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेकर आगे बढ़ने की। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और करियर में भी ना कभी कभी वही जरूरी होता है बिकॉज व्हेनेवर वी हियर अबाउट लेऑफ्स AI, टेक्नोलॉजी चेंजेस यंगर कलीग्स मूविंग फास्ट हमारे माइंड में एक ही सवाल आता है Am I still relevant? तो शायद वक्त आ गया है अपने नेक्स्ट चैप्टर को और थोड़ा क्लियरली देखने का। So New Jersey, mark the date, September 27th, four-time TEDx speakers, best-selling authors and multi-award-winning career coaches, Shilpa and Kapil Kulshrestha आ रहे हैं New Jersey में। They are coming to Sheraton Edison for an in-person career growth workshop. They have helped 1500 plus mid-career professional accelerate their promotions, get double promotion, improve their career growth workshop. they have helped 1500 plus mid-career professionals accelerate their promotions, get double promotion, improve their visibility,

0: एट शेरिटन एडिसन न्यू जर्सी। तो बप्पा के सीजन्स में ऑब्स्टेकल कम हो और ग्रोथ का रास्ता थोड़ा और क्लियर हो, इसलिए सुनते ही अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट नंबर 17।

मुबारक हो अखिल सचदेव, अब आप आवारापन 2 की इस मेमोरेबल साउंडट्रैक का हिस्सा बन गए हैं। पिया घर आया इस हफ्ते है नंबर 17 पर, और ऑनेस्टली आवारापन 2 सुनते ही मुझे लगा था कि यार अगर इमरान हाशमी वापस आ रहे हैं तो शायद मोहित सूरी भी इनके साथ ही आ रहे होंगे। वो रियूनियन तो नहीं हुआ, लेकिन मोहित सूरी का एक और यूनियन होने वाला है, और ये वाला काफी अनएक्सपेक्टेड है। राम गोपाल वर्मा यानी RGV, क्योंकि RGV कहानी लिख रहे हैं, मोहित सूरी डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू वोंट बिलीव इट, यशराज फिल्म्स। यानी एक तरफ वो फिल्म मेकर जिसने हिंदी सिनेमा के अंडरवर्ल्ड को एक पूरी सिनेमैटिक लैंग्वेज दी थी, दूसरी तरफ वो फिल्म मेकर जिसका सिनेमा अक्सर डार्कनेस के बीच भी दिल की धड़कन सुनता है, और तीसरी तरफ YRF जिसका नाम सुनते ही गैंगस्टर सिनेमा तो पहला जॉनर नहीं आता है दिमाग में। और शायद इसी में इस कोलैबोरेशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात छुपी है। RGV जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया कैसे काम करती है, मोहित सूरी जानते हैं कि उस दुनिया के अंदर लोग कैसे टूटते हैं। RGV ने दुनिया लिखी है, मोहित उस दुनिया के लोगों को पील करवा सकते हैं। और RGV ने खुद कहा है कि मोहित सूरी ने उनके स्क्रिप्ट को अपने फ्रॉम द हार्ट कैरेक्टर्स, इमोशनल म्यूजिक और अल्ट्रा रियलिस्टिक एक्शन के साथ और आगे बढ़ा दिया है। ये मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि RGV खुद डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी दुनिया किसी दूसरे फिल्म मेकर के हाथ में सौंप रहे हैं। राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म को धुरंधर से भी बड़ा बताया है, एंड कॉन्फिडेंस के लिए उनको सल्यूट तो करना पड़ेगा। लेकिन नंबर 16 पे है धुरंधर का ही शरारत, एंड उसके बाद इस कंपैरिजन को हम वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि असली जवाब ये नहीं है कि फिल्म धुरंधर से बड़ी होगी कि नहीं। असली सवाल ये है कि क्या मोहित सूरी एक राम गोपाल वर्मा गैंगस्टर स्टोरी को मोहित सूरी की फिल्म बना सकते हैं बिना उस RGV DNA को खोए हुए जिसने इस जॉनर को इतना स्पेशल बना दिया था। डूड, जस्ट थिंक ऑफ सत्या एंड कंपनी एंड यू विल नो व्हाट आई मीन। लेकिन 12 साल पहले मोहित ने एक विलन में भी एक रिफॉर्म्ड गैंगस्टर की कहानी सुनाई थी, एक ऐसा आदमी जो अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता है लेकिन अपना पास्ट नहीं छोड़ पाया था। He was looking towards the future with the soundtrack of एक विलन। ये गाना अंकित तिवारी की आवाज में है। This is my rewind track of the week। मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा बिकॉज इस गाने को आप बखूबी जानते हैं। Top 20 Rewind।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Inefficient,
7: very complex,
8: clumsy or
9: confusion ही confusion.
10: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
11: ओह नो,
2: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
0: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
2: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 15.

हमारी प्रॉब्लम इमेजिनेशन की तो कभी थी ही नहीं। इंडिया में कहानियों की कमी नहीं है, ऐसे हीरोज जो उड़ते हैं, ऐसे योद्धा जिनके पास इम्पॉसिबल शक्तियां हैं, ऐसे वेपन्स, ऐसे अस्त्र जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, गॉड्स, डीमंस, शेपशिफ्टर्स, इमॉर्टल्स। फिर भी बॉलीवुड के सुपर हीरोज की दुनिया में जाते ही जादू थोड़ा कम हो जाता है यार। मेन स्ट्रीम सिनेमा में सिर्फ दो ही फिल्म्स ऐसी याद आती हैं जो इस जॉनर को सच में क्रैक कर चुकी हैं। एक 1987 ऑलमोस्ट 40 साल पहले आई फिल्म मिस्टर इंडिया एंड देन ऋतिक रोशन की कोई मिल गया, और दोनों की एक बात कॉमन है, उन्होंने फिल्म की शुरुआत सुपर हीरो के साथ नहीं की, इंसान के साथ की। पहले हम उनके साथ जुड़े, फिर उनकी दुनिया में कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ, एंड शायद यही बॉलीवुड बार बार फिसल जाता है। हम सुपर हीरो बनाते वक्त सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहले डिजाइन करते हैं, उसकी यूनिवर्स बाद में। और बॉलीवुड का दूसरा प्रॉब्लम शायद यही है कि हम सुपर हीरो फिल्म को भी कभी कभी अपनी एग्जिस्टिंग मसाला वाली ग्रामर से लिखने लगते हैं। हीरो है तो रोमांस होगा, रोमांस है तो गाना होगा, विलेन है तो बड़ा एक्शन होगा, और सब कुछ बड़ा नहीं चाहिए क्योंकि बिगर इजंट ऑलवेज बेटर। और इसीलिए आमिर खान, आर बालकी और साजिद नाडियाडवाला एक सुपर हीरो फिल्म बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हर्ड, एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि आमिर एक ऑब्वियस सुपर हीरो नहीं है, बालकी ऑब्वियसली एक सुपर हीरो फिल्म मेकर नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आमिर खान सुपर हीरो बनेंगे कि नहीं, सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड आखिरकार एक ऐसी सुपर हीरो दुनिया बना सकता है जो बॉलीवुड की फिल्म ना लगे जिसमें सुपर हीरो हो। शायद इसी का जवाब हमारी सबसे पुरानी कहानी के पास है। बीच में वैसे एक गाना है नंबर 14 पर कॉल्ड साड़ी फ्रॉम धमाल 4, लेकिन उसको जरा साइड में करते हैं क्योंकि जिस फिल्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी कहानी है, रितेश तिवारी की रामायण। और जिस कहानी में भगवान है, राक्षस है, बानर है, अस्त्र है, और वो सफर है जो हजारों सालों से हमारी कल्पना के हिस्से बने हुए हैं, उसका पहला म्यूजिकल ग्लिम्प्स किसी सुपर हीरो एंथम की तरह नहीं है, वो एक प्रार्थना की तरह है। एआर रहमान के म्यूजिक में अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज। नंबर 13 पर ये है जय जय राम। नंबर 13।

समझो ना, कहानी का नाम है वन, लेकिन शुरुआत हो रही है रोमांटिक गाने से। इसे ही तो साइंस कहते हैं बाबू भैया। पिछले हफ्ते नंबर 14 पर डेब्यू किया था और इस हफ्ते दो स्पॉट्स ऊपर उठा हुआ है। क्लियरली एल्गोरिथम काम कर रहा है। वैसे बॉलीवुड में आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाला साइंस शायद यही है, एल्गोरिथम। हम क्या सुनते हैं, क्या स्किप करते हैं, क्या रिपीट करते हैं, किस सिंगर को बार बार लूप पे सुनते हैं, ये डेटा कलेक्ट होता है, पैटर्न समझा जाता है और फिर उसी पैटर्न के हिसाब से हमें आने वाले गाने मिलते हैं। साउंड्स परफेक्ट राइट? लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर म्यूजिक एक परफेक्ट एल्गोरिथम में बिठाया जा सकता तो क्या हमें वो फेवरेट गाने मिलते जो किसी एल्बम में नंबर 5 या 6 पे थे? नहीं ना। तो चलो 10 साल पीछे चलते हैं, 2016 में एक फिल्म की तरफ जिसका नाम था बार बार देखो। कटरीना कैफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और उस साउंडट्रैक में एक गाना था काला चश्मा। इट वाज अ बैंगर, फेमिलियर साउंड, इंस्टेंट हुक, डांस फ्लोर, शादियों में बज रहा है, रील्स में चल रहा है, एल्गोरिथम के लिए बिल्कुल परफेक्ट गाना और वो हिट भी हुआ। लेकिन उसी एल्बम में एक और गाना आया, खो गए हम कहां, इंटीमेट हेडफोन्स वाला गाना, ऐसा गाना जो शोर में नहीं तन्हाई में काम करता है। और फिर मुझे इसकी वजह से इतने सारे गाने याद आए, वेकअप सिड का एक तारा, अनजाना अनजानी का टाइटल ट्रैक, फिर ले आया दिल फ्रॉम बर्फी। ये ऐसे गाने जो किसी एल्गोरिथम के हिसाब से ऑब्वियस ब्लॉकबस्टर मटेरियल नहीं लगते, लेकिन ये गाने सिर्फ हिट नहीं होते, ये आपके अंदर एक घर बना लेते हैं। और शायद यही एल्गोरिथम हार जाता है। डेटा बता सकता है कि हम क्या सुनते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकता कि हम किस गाने से प्यार करने वाले हैं, वो कौन सा गाना है जो हमने रात को सुना है। पैटर्न प्रिडिक्ट किया जा सकता है, फीलिंग नहीं। और शायद इसलिए ग्रेट म्यूजिक वो नहीं है जो एल्गोरिथम हमारे लिए चूज करता है। ग्रेट म्यूजिक वो है जो हमारे अंदर कुछ ऐसा डिस्कवर करवा देता है जिसका डेटा अभी तक बना ही नहीं है। तो इसलिए जिस गाने की मैं बात कर रहा था, वही गाना आज मैं आपको सुना रहा हूँ। दिस इज जस्लीन रॉयल एंड प्रतीक कुहाड़ विद खो गए हम कहां। Top 20, rewind.

0: मैं हूँ।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Tera kya hoga, Kalia?
10: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
9: Ab mirchi kha.
11: Radio Mirchi, it's hot.

0: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने। उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
1: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध वूध ले, सब्जी वब्जी खरीदते, इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
0: एक विनर और एक सिक्स प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, आज सिर्फ मिर्ची पर।
2: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: यू आर लिसनिंग टू 103.3 FM HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो।

0: यार कभी कभी किसी फिल्म को देखते हुए ना एक अजीब सी चीज होती है, फिल्म अच्छी लगे या बुरी लेकिन उसके कैरेक्टर्स से एक रिश्ता नहीं बन पाता है, एक अपनापन फील ही नहीं होता है। एंड कॉकटेल के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हुआ था। देखो फिल्म की कहानी को लेकर बहुत ओपिनियंस थे लेकिन मेरे लिए जब मैं फिल्म के एक्टर्स के इंटरव्यू सुन रहा था यार वो कनेक्शन नहीं बन पाया था। उनकी बातचीत ज्यादातर इंग्लिश में हुआ करती थी एंड शायद इसी वजह से पता नहीं क्यों स्क्रीन पर जब मैं उस दुनिया के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था तो एक फासला सा महसूस हो रहा था, क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, भाषा हमारी कल्चर होती है, हमारी मेमोरी होती है, हमारी इंस्टिंक्ट होती है। एक ऐसे एक्टर हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, नाम है उनका जयदीप अहलावत, और उन्होंने इस चीज को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की थी।
1: मैं सरप्राइज्ड हो जाता हूँ, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं इतना सरप्राइज्ड हो गया जब मुझे पहली बार किसी को देखा कि एक्टर हिंदी नहीं पढ़ सकता, लिखी हुई हिंदी नहीं पढ़ सकता, अगर वो देवनागरी में लिखा गया है नहीं पढ़ सकता वो स्क्रिप्ट। एंड मुझे लगा कि इससे बुरा नहीं हो सकता, ऐसे ही नॉर्मल नए कोई आ गया बेचारे किसी को ऐसा कहीं केरला से, नहीं नहीं हिंदी भाषी प्रदेशों से निकले हुए लोग और वो हिंदी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हैं प्रॉपर, हर दूसरे वर्ड पे फंबल है, हर दूसरे वर्ड, क्योंकि उनको सिर्फ सुनने की आदत है, रोमन में दे दोगे तो पढ़ लेंगे।
0: देखो मुझे लगता है कि जयदीप भाई की बात का असली वजन देवनागरी पढ़ पाने या ना पढ़ पाने में नहीं है, सवाल ये है कि अगर आप हिंदी सिनेमा के एक एक्टर हो और हिंदी आपके लिए सिर्फ वो भाषा है जो आपको डायलॉग कोच या स्क्रिप्ट से सीखनी पड़ती है, तो भाई कुछ ना कुछ रास्ते में जरूर छूट गया है। और इसलिए मुझे कुणाल खेमू जैसे एक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। कुणाल ने खुद इंग्लिश और हिंदी के इस डिवाइड पर बहुत कुछ बोला, आप यूट्यूब पे जाके कोई भी उनका इंटरव्यू देख लो, उनकी हिंदी लेकिन अगर आप सुनोगे तो वो ट्रांसलेटेड नहीं लगती, वो यार अपनी लगती है। शायद इसलिए उनकी आने वाली फिल्म वाइव, उसमें उनके कैरेक्टर्स की बातचीत में वो फेमिलियरिटी है, वो फीलिंग है कि ये लोग किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बोल रहे, ये लोग तो वैसे ही बात करते हैं। और अब उसी एनर्जी को कुणाल खेमू थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 9 पर डेब्यू कर रहा है वाइब का टाइटल ट्रैक कंफ्यूजन, इरफाना हमीद और शुभम सुपन खिलरी की आवाज में, दिस इज ऐसी मेरी वाइब।
2: नंबर 9
3: अलग है लाइफ, अलग है स्टाइल, अलग है हाइप, मेरी अलग है वाइब, अलग है लाइफ।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi. इसका बाना उसका बाना सबका बाना क्या बाना? मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा Mirchi मुर्गा.
2: हेलो
3: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
2: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
3: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फुनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के. आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है.
2: क्या तुझे पागल
3: नहीं? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे.
2: क्या कहना है?
3: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना मेरी बात है. अच्छा चारू चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना. हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया. आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू. मैं रिक्शा नहीं चलाता चारू, प्लीज बुरा मत मान यार थोड़ा सा. नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज जरा थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना.
7: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार.
8: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर, और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है.
9: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक. बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com.
10: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स. आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
11: फ्री एंट्री, वन डे वन प्लेस, अ होल लॉट ऑफ फन. इट्स फॉल फन फेस्ट एंड एवरीवन्स इनवाइटेड. फीस्ट ऑन योर फेवरेट्स देन लाफ टिल इट हर्ट्स विद आवर ओन स्टैंड अप कॉमेडियन द विष्णु वाका, और लूज योरसेल्फ इन सुनीता कपूर्स मेलोडीज. फील द रिदम विद अ जुगलबंदी बाय लेजेंडरी विंसेंट पियर्स स्मिथ एंड प्रसाद Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा.
1: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot.
15: Number 7.
16: Fun.

0: और दूसरा सिक्स्थ आया था। विनर का नाम था काजी तौकीर और सिक्स्थ प्लेस पर आया था अरिजीत सिंह। आज काजी बिग बॉस के घर में है और एक नई जनरेशन उन्हें फिर से प्यार दे रही है। लेकिन अरिजीत, आज हम उनका नाम उस लिस्ट में लेते हैं जहां प्लेबैक लेजेंड्स बैठे हुए हैं, रफी, किशोर, सानू, उदित, सोनू और अब अरिजीत। फनी है ना, कभी कभी वक्त नंबर्स का मतलब ही बदल देता है। और अब जब अरिजीत अपने प्लेबैक करियर से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, हम एक अजीब से मोमेंट में हैं। गाने अभी भी आ रहे हैं, लेकिन ये वो गाने हैं जिनकी कमिटमेंट अरिजीत ने रिटायरमेंट लेने से पहले ही की हुई थी। यार हमें नहीं पता कि अगला अरिजीत का गाना कब आएगा। जब आ रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं और शायद इस वक्त उनकी कहानी का एक हिस्सा वो इंसान शायद सबसे अच्छे से समझता है जो 2005 में उनसे आगे निकल गया था, काजी तौकीर।
1: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। और उसकी चीज मुझे यही पसंद है कि आप देखो कभी भी वो शोज करता है, कभी ऐसे वो करता नहीं, यू नो
2: दिस इज माय कार, यू नो आई एम समवेयर, यू नो ऑल दोस थिंग्स, बहुत सिंपल।
1: स्कूटी पे घूमता है, दूध लेने जाता है मुर्शिदाबाद, दूध दूध ले, सब्जी वब्जी खरीद, इट्स अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम जैसा वो 17 तब था वैसा ही आज भी।
3: उसके अंदर करप्शन नहीं, ऑनेस्ट। हिंदुस्तान में क्या, मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में आज की डेट में अरिजीत जैसा ना कोई है, आई डोंट थिंक कोई आएगा।
0: शायद इसलिए अरिजीत की आवाज सिर्फ हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा नहीं बनी, वो हमारी जिंदगी का बैकग्राउंड स्कोर बन गया। और एक दिन वो बैकग्राउंड म्यूजिक खामोश हो जाएगा। वो वक्त आ रहा है, लेकिन म्यूजिक कभी रिटायर नहीं होता। एक आवाज रुकती है तो कोई दूसरी आवाज उसकी जगह ले लेती है। नंबर 5 पर कुणाल खेमू की फिल्म वाइब से अमित त्रिवेदी की आवाज और उन्हीं की कॉम्पोजिशन, दिस इज रातों में आना। नंबर 5।

0: सेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
1: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। आपणे गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मां जोडायो, जेमा
2: 13 सप्टेम्बर रविवार
1: सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर विस्काटवे ऑन 7323578200। जय गुरुदेव।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
6: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
5: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
7: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
9: Only on Mirchi. It's hot. Number 4.

0: आंखों से तूने ये क्या कह दिया। और मुझे लगता है कि इस गाने के टॉप 5 तक पहुंचने का सबसे बड़ा रीजन इसका म्यूजिक नहीं है, फैमिलियरिटी है। क्योंकि गाना चलता है तो जहन में आते हैं आमिर खान, रानी मुखर्जी और 90s का वो साउंड। देखो, कुछ चीजें सुनते ही हमारी मेमोरी है ना, वो एक्टिवेट हो जाती है। और बॉलीवुड फैमिलियरिटी को बहुत अच्छे से समझता है। पुराने गाने रिक्रिएट करो, पुरानी फ्रेंचाइजीज को वापस ले आओ, पुराने कैरेक्टर्स को दोबारा स्क्रीन पे खड़ा कर दो, क्योंकि फैमिलियरिटी में रिस्क नहीं होता और ऑडियंस पहले से इन्वेस्टेड होती है। नंबर 3 पर बाय द वे है चुनरी चुनरी, इसका एक और एग्जांपल बाय द वे, जहां एक पुरानी याद को नए जमाने के लिए दोबारा पैकेज किया गया। लेकिन इसी बॉलीवुड में कभी कभी एक ऐसा फिल्म मेकर आता है जो फेमिलियरिटी को साइड में रखकर इतना ओरिजिनल साउंडट्रैक क्रिएट करने की कोशिश करता है कि गाने फिल्म को समझने का दूसरा रास्ता बन जाते हैं। रामायण का जो नया गाना आया है उसे सुनते ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार, रणबीर कपूर को हमने आखिरी बार स्क्रीन पर 3 साल पहले देखा था एनिमल में। और एनिमल के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो रणबीर के साथ सबसे ज्यादा जो मुझे याद रहता है वो है उस फिल्म का म्यूजिक। और उस मैडनेस के पीछे एक मेथड था और ये रणबीर ने खुद बताया।
1: See, to give music for a love story is very easy. एक फैमिली क्राइम ड्रामा के लिए 7 सुपरहिट गाने देना is such a hard thing. हर गाना, हर बैकग्राउंड पीस शूटिंग के पहले रेडी था। अगर हम फाइट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि गाना लिप सिंक नहीं है, तो he could have easily recorded it after shoot. But every piece which is the 3 hour 20 minute पे जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हुआ है वो रेडी था शूटिंग के पहले। सो एज एक्टर, जब आप बैकग्राउंड सॉन्ग सुनते हो आपको वो टोन मिल जाता है सीन का। इट मेक्स इट इजियर फॉर यू।
0: इसलिए एनिमल में म्यूजिक सीन के बाद नहीं आता, म्यूजिक सीन के अंदर पहले से मौजूद होता है। और शायद एनिमल की कामयाबी ने संदीप रेड्डी वांगा को अब एक और चीज दे दी है और वो है आजादी। क्योंकि उसका जो सीक्वल आ रहा है ना एनिमल पार्क, शायद ये आजादी कितनी दूर जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन अगर पहली फिल्म को इंडिकेशन है तो म्यूजिक चीर फाड़ करने वाला है। अगर मुझे एनिमल के उस पूरे इमोशनल लैंडस्केप में कोई ऐसा गाना ढूंढना है जो पूरी कहानी को समेट ले, तो मेरे लिए वो ये गाना है बी प्राक की आवाज में। इट इज माय पिक ऑफ द वीक।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
7: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
8: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी।
9: Only on Mirchi. It's hot. Number 2.

0: नंबर दो पर आते ही एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हो गया है। एक तरफ वो फिल्म है जिसे रणवीर सिंह के करियर का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ नंबर वन पर फिर से वही गाना है जो एक ऐसी फिल्म से आया है जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वो इमरान हाशमी के करियर की टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। आई एम टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट आवारापन। इमरान का जो अर्ली करियर था ना, वो काफी इंटरेस्टिंग था। फिल्में चल रही थी, गाने भी चल रहे थे, ऑडियंसेस भी आ रही थी, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उन्हें इमरान हाशमी में एक्टर से ज्यादा एक इमेज नजर आती थी। किसिंग सीन्स आए तो सीरियल किसर का टैग लग गया, लेकिन फिर आई आवारापन। देखो फिल्म नहीं चली ये सब जानते हैं, लेकिन इमरान के लिए कुछ बदल गया। उन्होंने पहली बार अपने आप को उस इमेज से बाहर देखना शुरू किया, और वो खुद इस जर्नी को कुछ इस तरह याद करते हैं।
1: मेरा कभी नहीं था कि मुझे क्रिटिक्स को अपीज करना है। मुझमें कहीं एक चाह थी कि यार अभी बस हो गया, ये प्रोड्यूसर्स को ज्यादा ही दे हैव एक्सप्लॉइटेड द फैक्ट दैट देयर इज इमेज। एंड हाँ, फिल्में चल रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी मिल रही है, बट फ्रॉम इनसाइड आई नो लाइक हिम, सो इट वाज लाइक अ फायर टू काइंड ऑफ आल्सो एक्सप्लोर अनदर फैसेट ऑफ एक्टिंग जहाँ देयर कैरेक्टराइजेशन हो। एंड देन थैंकफुली वी स्टंबल्ड अपॉन दिस व्हिच टच्ड अपॉन सम रियली सेंसिटिव थिंग्स, यू नो, losing someone you love. So a very painful moments, and I kind of it kind of satiated me as an actor.
0: यार कभी कभी एक्टर को करियर बदलने के लिए ब्लॉकबस्टर नहीं चाहिए होती है, उन्हें सिर्फ एक ऐसी फिल्म चाहिए होती है जो उन्हें ये प्रूव कर दे कि वो और भी कुछ कर सकते हैं। एंड आवारापन ने इमरान में वो जज्बात जगाए। उसके बाद डायरेक्टर्स आए, कैरेक्टर्स आए, और धीरे धीरे वो एक्टर भी सामने आया जो उस इमेज के पीछे छुपा हुआ था। और शायद इसलिए आज जब दुनिया आवारापन को सेलिब्रेट कर रही है, बॉक्स ऑफिस के लिए, नॉस्टैल्जिया के लिए, इमरान हाशमी के कमबैक के लिए, तो मुझे इस फिल्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये लगती है कि इसने इमरान हाशमी के पूरे इमेज को तोड़ दिया और बदलने का मौका दिया। एंड इजंट दैट व्हाट ग्रेट सिनेमा इज। फिल्म्स कभी कभी एक्टर को स्टार नहीं बनाती है, कभी कभी एक्टर को खुद से आगे जाने की परमिशन देती है। नंबर वन पर फिर से द रिलेशनशिप कंटिन्यूज। दिस इज तेरा मेरा रिश्ता।

0: कुछ गाने खत्म हो जाते हैं, साथ में कुछ कहानियां, लेकिन कुछ आवाजें वो कहीं नहीं जाती। आज की कहानी मैं यही खत्म कर रहा हूँ। गाने चलते रहेंगे, यादें भी बनती रहेंगी, लेकिन हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट ऑन द मिर्ची टॉप 20, दिस इज सुरेश, ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 2005 में एक सिंगिंग रियलिटी शो जीता काजी तौकीर ने। उस शो का नाम फेम गुरुकुल, और उसी शो में नंबर 6 पे आए अरिजीत सिंह। आज काजी को बिग बॉस में एक नई ऑडियंस प्यार दे रही है, लेकिन अरिजीत वो इंडिया के ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर्स में एक बन गया है, लेकिन अब वो रिटायरमेंट के किनारे है। लेकिन काजी के पास अरिजीत को लेकर एक ऐसी कहानी है जो शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी।
1: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। बहुत सिंपल, स्कूटी पे घूमते हैं, दूध लेने जाते हैं मुर्शिदाबाद, दूध वूध ले, सब्जी वब्जी खरीद, ही इज अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम, जैसा वो तब था वैसा ही आज भी।
0: एक विनर और एक सिक्स्थ प्लेस कंटेस्टेंट, और एक कहानी जो 21 साल बाद भी खत्म नहीं हुई। सुनिएगा ऑन द मिर्ची टॉप 20 विद मी सुरेन, आज सिर्फ मिर्ची पर।
2: सुरेन के साथ, only on Mirchi. It's hot.
3: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey, and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: Mirci. Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Murga, murga. La virtua la murga. Mirci, murga.
1: हेलो
2: हेलो मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ जी, नहीं पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की. सर वो भी हो नहीं पाई है, वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं, क्या नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज गए तुम्हें, जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई.
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डलना है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर, वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर,
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मतलब हम
1: क्या करा दू
2: सर, मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे आप, गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है, हमने भी तो ग्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी है FIR वगैरह कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया मुर्गा.
3: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, छोटा सा मजाक किया तुम्हारे साथ, मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
1: कुकड़ू कू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit IAWEA.US.
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस.
9: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
10: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
11: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
10: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
14: Ab, mirchi kha.
16: Radio Mirchi, it's hot.

0: एजी द गैंगस्टर।
1: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
2: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
1: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। इट्स 2 AM, हर फीवर इज क्लाइंबिंग एंड आवर पीडियाट्रिशियन ऑफिस इज क्लोज टिल मंडे। व्हाट डू वी डू?
8: Don't worry, I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
7: Wait, they can see us on Sunday?
8: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
12: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
11: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
12: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
11: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islington.
13: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
14: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
15: तेरा क्या होगा कालिया?
16: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
15: अब मिर्ची खा।
17: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
4: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
5: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो
2: मिल गया मैडम, आप मयूर विहार में हमारा रक्षा पे बैठ के मयूर विहार फेज वन से फेज टू गई थी, याद है आपका?
1: नहीं, नंबर कहाँ से मिल गया?
2: वही आपको बता रहे हैं, आप जब उतर के गई हैं ना अपने घर, और घर के जो आपके पड़ोसी हैं, हम उनसे नंबर आपका लिए हैं, मोबाइल नंबर जो आप बोले हैं दाएं को मुड़ने के लिए, जब दाएं मुड़े हैं ना हम, मैडम आपका रास्ते में फोन भी आया था, जब आपका फोनवा बजा है तो आपकी आवाज़ सुने हैं हम, बहुत अच्छा लगा है आवाज़ सुन के। आप जब रिक्शा पे बैठी है ना, मैं हम कसम खा रहे हैं, हम जब से आप बैठे हो उस सीट को हम छूने भी नहीं दिए, हम धुलाए भी नहीं है।
1: क्या तुझे पागल लगता
2: नहीं वो? मैडम हम आपसे एक बात कहना चाह रहे थे।
1: क्या कहना है?
2: मैडम आई लव यू, हम आपको देख के इतना
3: मेरी बात है। अच्छा चारू, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू फोन मत रखना, चारू चारू चलो। हेलो हेलो हेलो हेलो चारू, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने मुझे बताया कि तुमने रिक्शा पे ट्रैवल किया था, रिक्शा पे बैठ के गई थी, मैंने तो मजाक किया, तुम्हारा मुर्गा बना दिया। आई लव यू बट मैं सभी से मोहब्बत करता हूँ यार, आई लव यू, मैं रिक्शा नहीं चलाता हूँ। चारू प्लीज बुरा मत मान यार, थोड़ा सा
1: मैंने सोचा यार रिक्शा, तुम आओ कभी मिलो मुझे, तुमसे रिक्शा ही चलवाऊंगी।
3: नहीं रिक्शा मैं चलाने को तैयार हूँ यार तुम्हारी वजह से, लेकिन तुम प्लीज थोड़ा सा गुस्सा कम कर दो, मेरे साथ प्यार से हंस के बोल दो।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
7: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
6: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
7: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
8: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, हिजलिन।
12: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugalbandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
13: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
14: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटेटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
13: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
15: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
16: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
17: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, best quality at the lowest prices.
16: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
18: Listener mein back to back gana sunega,
19: back to back gana sunega.
18: Only on 92.3 102.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot

0: आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो।

0: मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
1: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: बेटा, शादी next week है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
5: अरे माँ, अभी भेजता हूँ। टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
4: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
6: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
7: सोना खरीदने की सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: Worried अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
12: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
13: Hi everybody, New Jersey is where we're going to be.
14: Sneakers, Kanjivaram sari, aur wahi electrifying vibe. Experience the Queen of Pop, Usha Uthup, live and up close. October 11th, Agrani Durga Puja, New Jersey. Book on agranish.booktix.com or Sulekha. Call 954-918-8589.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
17: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
4: अक्टूबर 11th अग्रणी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
3: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK ज्वेल्स। RK ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
5: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
6: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
5: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
7: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
10: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: कुछ तो बदल गया है बॉलीवुड में. पहले फिल्म में सुपरस्टार हो तो एक्साइटमेंट अपने आप आ जाती थी. बड़ी फिल्म हो तो थिएटर जाना ऑलमोस्ट कंपल्सरी था. लेकिन आज नाम बड़ा हो सकता है, फिल्म को फिर भी खुद को प्रूव करना पड़ता है. शायद बॉलीवुड बदला है, लेकिन मुझे लगता है असली बदलाव हम में आया है. हम सब अब सिर्फ स्टार्स को नहीं देखते, सिर्फ स्केल से इंप्रेस नहीं होते, सिर्फ नॉस्टैल्जिया के नाम पर टिकट नहीं खरीदते. हम डिसाइड करते हैं कि क्या देखना है, क्या सुनना है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है. शायद इसलिए बॉलीवुड को समझने का सबसे ऑनेस्ट तरीका उसकी अनाउंसमेंट्स नहीं, उसकी ऑडियंस को सुनना है. और हम वही करने वाले हैं. हाय, दिस इज द मिर्ची टॉप 20. माय नेम इज सुरेन सुंदरम. एंड शुरू करते हैं उस गाने से जो एक सिंपल बात याद दिलाता है. हाइप खत्म हो जाती है लेकिन म्यूजिक रह जाता है. शान एंड सुखविंदर सिंह की आवाज में दी ओजीज, दिस इज हैवान का गाना रंगियारा, कंपोज बाय प्रीतम दा, एंड इट्स द फर्स्ट सॉन्ग हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20.
4: नंबर 20.

तभी नोटिस किया है कुछ गाने एक ही दुनिया के नहीं लगते। माशूका को जरा ध्यान से सुनो, एक साइड पर मेलेडी है और दूसरी तरफ देयर इज दिस प्रोडक्शन, दोनों की लैंग्वेजेस काफी अलग है फिर भी गाना एक ही आइडेंटिटी रखता है। इसे कहते हैं जॉनर हाइब्रिड। सिंपल भाषा में मेलेडी एक दुनिया से होती है और बीट दूसरी दुनिया से, और जब दोनों सही हाथ में मिलते हैं तो तीसरी दुनिया पैदा हो जाती है।

बेशरम रंग एफ्रोबीट और लैटिन इलेक्ट्रॉनिक टेरिटरी में चली जाती है, लेकिन शिल्पा राव की आवाज यार, वो तो ऐसा लगता है कि उनकी आवाज में गजल वाली नजाकत है। एंड देन देयर इज दिस, क्योंकि

तुमियों में मेलोडी एक हिंदी गजल की तरह दिल से निकलती है और पीछे पियानो और स्ट्रिंग्स उस इमोशन को ऑलमोस्ट एक वेस्टर्न क्लासिकल स्केल दे देते हैं। एक तीसरा गाना भी है कि आपको अच्छी तरह मालूम है। अंधेरा

0: चन्ना मेरेया, सूफी मेलेडी, उर्दू अल्फाज, लेकिन गिटार और ड्रम्स उस हार्ट ब्रेक को आगे ढकेल रहे हैं। यानी जॉनर बदल रहा है, इमोशन नहीं। और अब विशाल मिश्रा इसी गेम को और ज्यादा तोड़ रहे हैं। अ सोलफुल हिंदी मेलेडी, पर इट्स गॉट EDM, इट्स गॉट डबस्टेप, इट्स गॉट रैप, यानी कि तीन अलग अलग म्यूजिकल वर्ल्ड्स एक ही गाने में। जॉनर की बाउंड्रीज म्यूजिशियन बनाते हैं, म्यूजिक खुद नहीं। ये है वक्त फ्रॉम द फिल्म टॉक्सिक, नंबर 18 पर डेब्यू विशाल मिश्रा और कौशल किशोर की कोलैबोरेशन।
1: नंबर 18

0: हेलो,
1: दिमाग खराब कर रखा है। रॉयल स्टूडियो से बोल रहे हैं भाई?
0: हाँ जी।
1: यार कमाल कर दिया आपने, जो फोटो खींचे थे मेरे बेटे की शादी के, सारी एल्बम आ गई है। क्या फोटो खींचे यार, दिमाग खराब कर दिया।
0: क्यों सर जी, क्या हो गया फोटो में?
1: अरे फोटो आके देख यार, यहाँ पे क्या एल्बम बना रखी है, सबके फोटो अजीब से आए यार, सारे फोटो यार बकवास कर दिया आपने, मेरा दिमाग खराब।
0: फोटो बहुत अच्छा है। क्या
1: फोटो? बहुत अच्छा है। सतीश चंद का एक बटन है, उसकी शादी के फोटो बिगाड़ दिए यार, सारे दिमाग।
0: सतीश जी बहुत अच्छे फोटो। बहुत।
1: अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब मैं पागल हूँ? आपने एल्बम देखी है? एल्बम देखी है?
0: सर जी हमने फिश लाइन लगाया उसके ऊपर, बेहतरीन। आप देखिए एक एक से बेहतरीन क्लोजअप है उसके अंदर।
1: अरे क्लोजअप को मारा गोली यार, क्लोजअप तो देखे में शर्म आ रही है हमें।
0: अरे शर्म की क्या बात है सर,
1: जितने फोटो हैं सबके कपड़े गायब है यार, तूने किया क्या ये?
0: किसी का
1: कपड़े गायब है, एक आदमी का मैं खड़ा हूँ, अजीब सा लग रहा हूँ यार। मैं
0: लेंस कौन सा लगाया? नहीं
1: क्या, कौन सा लेंस लगाया? एक तो बता, ये बदमाशी करते हो, कपड़े
0: गायब? नहीं,
1: कल को
0: फोटो खींचे।
1: अरे लेंस ऐसे
0: पूरे
1: कपड़े कौन से? मैंने शेरवानी पहना की थी, शेरवानी गायब है, अंदर से सब दिख रहा है यार। शेरवानी तुमने गायब करी है यार मेरी?
0: नहीं सर, शेरवानी गायब नहीं है।
1: अरे मैं केस कर सकता हूँ वहाँ पे?
0: नहीं साहब, देखिए केस वेस की बात मत कीजिए, इसने हमारा नाम है इलाके में।
1: अरे हमारा भी कुछ था, अब कुछ नहीं बचा जब से फोटो देखे हैं।
0: सर क्या बात, चुन के बनाया है?
1: कोई फोटो चुन के नहीं बनाया, मेरा बेटा खड़ा है, कपड़े नहीं है बहू उसका, चलो छोड़ो, मैंने देखा भी नहीं है, वो खड़ा है, जितने बराती आया है सबके कपड़े गायब है, ऐसा लग रहा है यार, पता नहीं अफ्रीका में शादी हो रही है यार।
0: अरे नहीं सर, कहीं गड़बड़ लग रही है मुझे,
1: गड़बड़
0: देखना चाहूंगा एक बार फिर आपकी एल्बम, ऐसी कोई बात नहीं
1: यार, इतना बुरा लग रहा है, हर आदमी के प्लेट में, हर आदमी के हाथ में प्लेट है, कपड़े है भी।
0: दिखाइए
1: आपका कपड़े कैसे, आप उसको सही करिए यार,
0: कोई सिस्टम ही नहीं है कपड़े गायब हो जाए,
1: ऐसा सिस्टम है एक जगह होता है,
0: कहाँ होता है बताइए?
2: रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर आप मुर्गा बन रहे हैं रेडियो मिर्ची।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
10: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
11: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
5: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155.
12: Free entry. One day, one place, a whole lot of fun. It's Fall Fun Fest and everyone's invited. Feast on your favorites, then laugh till it hurts with our own stand-up comedian, the Vishnu Vaka. Or lose yourself in Sunita Kapoor's melodies. Feel the rhythm with a Jugal Bandi by legendary Vincent Pierce Smith and Prasad Joshi. Light up the stage at the Milchi Hot Mic Talent Show. And the little ones? A dazzling magic show and a free eye checkup. Mark your calendar. September 27th at Parlor Banquet, Woodbridge Avenue. For more information, visit iawea.us.
13: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
14: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
13: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
15: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
16: यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
17: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
16: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
17: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
16: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
18: हमारा करियर भी ना कभी कभी फुल बॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है। फर्स्ट हाफ में सेटअप, इंटरवल पे कंफ्यूजन और सेकंड हाफ में डिसाइड होता है कि हीरो कमबैक कैसे करेगा। श्याम शांता लाइक सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धिया। और अगर आपको भी लग रहा है कि आपके करियर की स्टोरी को भी एक स्ट्रॉन्गर सेकेंड हाफ चाहिए, देन न्यू जर्सी मार्क द डेट September 27th। शेरिटन एडिसन में आ रहे हैं 4-time TEDx स्पीकर्स, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स एंड मल्टी अवार्ड विनिंग करियर कोचेस शिल्पा एंड कपिल कुलश्रेष्ठ, आपके करियर की स्टोरी को एक फ्रेश कमबैक देने के लिए, विद एन इन पर्सन करियर ग्रोथ वर्कशॉप डिजाइंड स्पेशली फॉर प्रोफेशनल्स हु आर रेडी टू रीथिंक व्हाट कम्स नेक्स्ट। एंड दे आर नॉट जस्ट कमिंग विद थियोरी, दे हैव ऑलरेडी वर्कड विद 1500 प्लस मिड करियर प्रोफेशनल्स, हेल्पिंग देम एक्सेलरेट प्रमोशंस, गेट डबल प्रमोशंस, इम्प्रूव विजिबिलिटी, स्ट्रेंथन लीडरशिप प्रेजेंस, अट्रैक्ट बिगर अपॉर्चुनिटी एंड इवन गेट अप टू 50-180% सैलरी रेजेस। सो थिंक of this workshop as your career ka rewrite room where you can revitalize your career, reposition your value and move forward with more clarity and confidence. To aaj hi jaiye, register and revitalize your career, reposition your value and move forward with more clarity and confidence. To aaj hi jaiye, register kijiye at playit

मुबारक हो अखिल सचदेव, अब आप आवारापन 2 की इस मेमोरेबल साउंडट्रैक का हिस्सा बन गए हैं। पिया घर आया इस हफ्ते है नंबर 17 पर, और ऑनेस्टली आवारापन 2 सुनते ही मुझे लगा था कि यार अगर इमरान हाशमी वापस आ रहे हैं तो शायद मोहित सूरी भी इनके साथ ही आ रहे होंगे। वो रियूनियन तो नहीं हुआ, लेकिन मोहित सूरी का एक और यूनियन होने वाला है, और ये वाला काफी अनएक्सपेक्टेड है। राम गोपाल वर्मा यानी RGV, क्योंकि RGV कहानी लिख रहे हैं, मोहित सूरी डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, यू वोंट बिलीव इट, यशराज फिल्म्स। यानी एक तरफ वो फिल्म मेकर जिसने हिंदी सिनेमा के अंडरवर्ल्ड को एक पूरी सिनेमैटिक लैंग्वेज दी थी, दूसरी तरफ वो फिल्म मेकर जिसका सिनेमा अक्सर डार्कनेस के बीच भी दिल की धड़कन सुनता है, और तीसरी तरफ YRF जिसका नाम सुनते ही गैंगस्टर सिनेमा तो पहला जॉनर नहीं आता है दिमाग में। और शायद इसी में इस कोलैबोरेशन की सबसे इंटरेस्टिंग बात छुपी है। RGV जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया कैसे काम करती है, मोहित सूरी जानते हैं कि उस दुनिया के अंदर लोग कैसे टूटते हैं। RGV ने दुनिया लिखी है, मोहित उस दुनिया के लोगों को पील करवा सकते हैं। और RGV ने खुद कहा है कि मोहित सूरी ने उनके स्क्रिप्ट को अपने फ्रॉम द हार्ट कैरेक्टर्स, इमोशनल म्यूजिक और अल्ट्रा रियलिस्टिक एक्शन के साथ और आगे बढ़ा दिया है। ये मुझे जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि RGV खुद डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी दुनिया किसी दूसरे फिल्म मेकर के हाथ में सौंप रहे हैं। राम गोपाल वर्मा ने इस फिल्म को धुरंधर से भी बड़ा बताया है, एंड कॉन्फिडेंस के लिए उनको सल्यूट तो करना पड़ेगा। लेकिन नंबर 16 पे है धुरंधर का ही शरारत, एंड उसके बाद इस कंपैरिजन को हम वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि असली जवाब ये नहीं है कि फिल्म धुरंधर से बड़ी होगी कि नहीं। असली सवाल ये है कि क्या मोहित सूरी एक राम गोपाल वर्मा गैंगस्टर स्टोरी को मोहित सूरी की फिल्म बना सकते हैं बिना उस RGV DNA को खोए हुए जिसने इस जॉनर को इतना स्पेशल बना दिया था। डूड, जस्ट थिंक ऑफ सत्या एंड कंपनी एंड यू विल नो व्हाट आई मीन। लेकिन 12 साल पहले मोहित ने एक विलन में भी एक रिफॉर्म्ड गैंगस्टर की कहानी सुनाई थी, एक ऐसा आदमी जो अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकलना चाहता है लेकिन अपना पास्ट नहीं छोड़ पाया था। He was looking towards the future with the soundtrack of एक विलन। ये गाना अंकित तिवारी की आवाज में है। This is my rewind track of the week। मैं इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा बिकॉज इस गाने को आप बखूबी जानते हैं। Top 20 Rewind।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
7: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
8: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
7: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
9: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
10: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ थाउजेंड ईयर ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज कम्स द नाम। Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
11: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे।
12: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
13: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
13: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
12: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
0: तो हो जाइए तैयार एक ऐसी यादगार शाम के लिए जहां होगा संगीत, मस्ती, नॉस्टैल्जिया और उषा उथुप का वही लेजेंडरी इलेक्ट्रिफाइंग अंदाज। इस दुर्गा पूजा न्यू जर्सी झूमेगा एक लेजेंड के साथ।
14: अक्टूबर 11th अग्रानी दुर्गा पूजा NJ। टिकट सेलिंग फास्ट ऑन सुलेखा। कॉल 9549188589।
15: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
16: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
15: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
17: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
18: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना। इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
17: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
14: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
19: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
20: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
19: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
21: एक ही होता है।
19: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
22: नंबर 15।

हमारी प्रॉब्लम इमेजिनेशन की तो कभी थी ही नहीं। इंडिया में कहानियों की कमी नहीं है, ऐसे हीरोज जो उड़ते हैं, ऐसे योद्धा जिनके पास इम्पॉसिबल शक्तियां हैं, ऐसे वेपन्स, ऐसे अस्त्र जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं, गॉड्स, डीमंस, शेपशिफ्टर्स, इमॉर्टल्स। फिर भी बॉलीवुड के सुपर हीरोज की दुनिया में जाते ही जादू थोड़ा कम हो जाता है यार। मेन स्ट्रीम सिनेमा में सिर्फ दो ही फिल्म्स ऐसी याद आती हैं जो इस जॉनर को सच में क्रैक कर चुकी हैं। एक 1987 1987 ऑलमोस्ट 40 साल पहले आई फिल्म मिस्टर इंडिया एंड देन ऋतिक रोशन की कोई मिल गया। और दोनों की एक बात कॉमन है, उन्होंने फिल्म की शुरुआत सुपर हीरो के साथ नहीं की, इंसान के साथ की। पहले हम उनके साथ जुड़े, फिर उनकी दुनिया में कुछ ऐसा एक्स्ट्रॉर्डिनरी हुआ, एंड शायद यही बॉलीवुड बार बार फिसल जाता है। हम सुपर हीरो बनाते वक्त सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम पहले डिजाइन करते हैं, उसकी यूनिवर्स बाद में। और बॉलीवुड का दूसरा प्रॉब्लम शायद यही है कि हम सुपर हीरो फिल्म को भी कभी कभी अपनी एग्जिस्टिंग मसाला वाली ग्रामर से लिखने लगते हैं। हीरो है तो रोमांस होगा, रोमांस है तो गाना होगा, विलेन है तो बड़ा एक्शन होगा। और सब कुछ बड़ा नहीं चाहिए, क्योंकि बिगर इजंट ऑलवेज बेटर। और इसीलिए आमिर खान, आर बाल्की और साजिद नाडियाडवाला एक सुपर हीरो फिल्म बनाना चाहते हैं, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, एंड दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आमिर एक ऑब्वियस सुपर हीरो नहीं है, बाल्की ऑब्वियसली एक सुपर हीरो फिल्म मेकर नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि आमिर खान सुपर हीरो बनेंगे कि नहीं, सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड आखिरकार एक ऐसी सुपर हीरो दुनिया बना सकता है जो बॉलीवुड की फिल्म ना लगे जिसमें सुपर हीरो हो। शायद इसी का जवाब हमारी सबसे पुरानी कहानी के पास है। बीच में वैसे एक गाना है नंबर 14 पर कॉल्ड साड़ी फ्रॉम धमाल 4, लेकिन उसको जरा साइड में करते हैं, क्योंकि जिस फिल्म की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी कहानी है, नितेश तिवारी की रामायण। और जिस कहानी में भगवान है, राक्षस है, बानर है, अस्त्र है, और वो सफर है जो हजारों सालों से हमारी कल्पना के हिस्से बने हुए हैं। उसका पहला म्यूजिकल ग्लिम्प्स किसी सुपर हीरो एंथम की तरह नहीं है, वो एक प्रार्थना की तरह है। एआर रहमान के म्यूजिक में अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज। नंबर 13 पर यह है जय जय राम। नंबर 13।

समझो ना, कहानी का नाम है वन, लेकिन शुरुआत हो रही है रोमांटिक गाने से। इसे ही तो साइंस कहते हैं बाबू भैया। पिछले हफ्ते नंबर 14 पर डेब्यू किया था और इस हफ्ते दो स्पॉट्स ऊपर उठा हुआ है। क्लियरली एल्गोरिथम काम कर रहा है। वैसे बॉलीवुड में आजकल सबसे ज्यादा यूज होने वाला साइंस शायद यही है, एल्गोरिथम। हम क्या सुनते हैं, क्या स्किप करते हैं, क्या रिपीट करते हैं, किस सिंगर को बार बार लूप पे सुनते हैं, ये डेटा कलेक्ट होता है, पैटर्न समझा जाता है और फिर उसी पैटर्न के हिसाब से हमें आने वाले गाने मिलते हैं। साउंड्स परफेक्ट राइट? लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर म्यूजिक एक परफेक्ट एल्गोरिथम में बिठाया जा सकता तो क्या हमें वो फेवरेट गाने मिलते जो किसी एल्बम में नंबर 5 या 6 पे थे? नहीं ना। तो चलो 10 साल पीछे चलते हैं, 2016 में एक फिल्म की तरफ जिसका नाम था बार बार देखो। कटरीना कैफ, सिद्धार्थ मल्होत्रा, फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था और उस साउंडट्रैक में एक गाना था काला चश्मा। इट वाज अ बैंगर, फेमिलियर साउंड, इंस्टेंट हुक, डांस फ्लोर, शादियों में बज रहा है, रील्स में चल रहा है, एल्गोरिथम के लिए बिल्कुल परफेक्ट गाना और वो हिट भी हुआ। लेकिन उसी एल्बम में एक और गाना आया, खो गए हम कहां, क्वाइट, इंटीमेट, हेडफोन्स वाला गाना, ऐसा गाना जो शोर में नहीं तन्हाई में काम करता है। और फिर मुझे इसकी वजह से इतने सारे गाने याद आए, वेकअप सिड का एक तारा, अनजाना अनजानी का टाइटल ट्रैक, फिर ले आया दिल फ्रॉम बर्फी। ये ऐसे गाने जो किसी एल्गोरिथम के हिसाब से ऑब्वियस ब्लॉकबस्टर मटेरियल नहीं लगते, लेकिन ये गाने सिर्फ हिट नहीं होते, ये आपके अंदर एक घर बना लेते हैं। और शायद यही एल्गोरिथम हार जाता है। डेटा बता सकता है कि हम क्या सुनते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकता कि हम किस गाने से प्यार करने वाले हैं, वो कौन सा गाना है जो हमने रात को सुना है। पैटर्न प्रिडिक्ट किया जा सकता है, फीलिंग नहीं। और शायद इसलिए ग्रेट म्यूजिक वो नहीं है जो एल्गोरिथम हमारे लिए चूज करता है, ग्रेट म्यूजिक वो है जो हमारे अंदर कुछ ऐसा डिस्कवर करवा देता है जिसका डेटा अभी तक बना ही नहीं है। तो इसलिए जिस गाने की मैं बात कर रहा था, वही गाना आज मैं आपको सुना रहा हूँ। दिस इज जसलीन रॉयल एंड प्रतीक कुहाड़ विद खो गए हम कहां। Top 20 Rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
4: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
3: Explore our stunning bridal lehengas aur exclusive reception wear.
4: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
3: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islip.
9: This hour is brought to you by Raj Jewels.
10: Listener MA, back to back gana sunega.
11: Back to back gana sunega.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: यार कभी कभी किसी फिल्म को देखते हुए ना एक अजीब सी चीज होती है। फिल्म अच्छी लगे या बुरी, लेकिन उसके कैरेक्टर्स से एक रिश्ता नहीं बन पाता है, एक अपनापन फील ही नहीं होता है। एंड कॉकटेल के साथ मेरे लिए कुछ ऐसा ही हुआ था। देखो फिल्म की कहानी को लेकर बहुत ओपिनियंस थे, लेकिन मेरे लिए जब मैं फिल्म के एक्टर्स के इंटरव्यू सुन रहा था यार, वो कनेक्शन नहीं बन पाया था। उनकी बातचीत ज्यादातर इंग्लिश में हुआ करती थी, एंड शायद इसी वजह से पता नहीं क्यों स्क्रीन पर जब मैं उस दुनिया के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था तो एक फासला सा महसूस हो रहा था। क्योंकि लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होती, भाषा हमारी कल्चर होती है, हमारी मेमोरी होती है, हमारी इंस्टिंक्ट होती है। एक ऐसे एक्टर हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, नाम है उनका जयदीप अहलावत, और उन्होंने इस चीज को लेकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन शेयर की थी।
1: मैं सरप्राइज्ड हो जाता हूँ, मैं मजाक नहीं करता हूँ, मैं इतना सरप्राइज्ड हो गया जब मुझे पहली बार किसी को देखा कि एक्टर हिंदी नहीं पढ़ सकता, लिखी हुई हिंदी नहीं पढ़ सकता। अगर वो देवनागरी में लिखा गया है नहीं पढ़ सकता वो स्क्रिप्ट, एंड मुझे लगा कि इससे बुरा नहीं हो सकता। ऐसे ही नॉर्मल नए नए कोई आ गया बेचारे किसी को ऐसा कहीं केरला से, नहीं नहीं, हिंदी भाषी प्रदेशों से निकले हुए लोग और वो हिंदी की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ सकते हैं प्रॉपर। हर दूसरे वर्ड पे फंबल है, हर दूसरे वर्ड, क्योंकि उनको सिर्फ सुनने की आदत है, रोमन में दे दोगे तो पढ़ लेंगे।
0: देखो मुझे लगता है कि जयदीप भाई की बात का असली वजन देवनागरी पढ़ पाने या ना पढ़ पाने में नहीं है। सवाल ये है कि अगर आप हिंदी सिनेमा के एक एक्टर हो और हिंदी आपके लिए सिर्फ वो भाषा है जो आपको डायलॉग कोच या स्क्रिप्ट से सीखनी पड़ती है, तो भाई कुछ ना कुछ रास्ते में जरूर छूट गया है। और इसलिए मुझे कुणाल खेमू जैसे एक्टर्स काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। कुणाल ने खुद इंग्लिश और हिंदी के इस डिवाइड पर बहुत कुछ बोला। आप यूट्यूब पे जाके कोई भी उनका इंटरव्यू देख लो, उनकी हिंदी लेकिन अगर आप सुनोगे तो वो ट्रांसलेटेड नहीं लगती, वो यार अपनी लगती है। शायद इसलिए उनकी आने वाली फिल्म वाइब, उसमें उनके कैरेक्टर्स की बातचीत में वो फेमिलियरिटी है, वो फीलिंग है कि ये लोग किसी फिल्म के डायलॉग नहीं बोल रहे, ये लोग तो वैसे ही बात करते हैं। और अब उसी एनर्जी को कुणाल खेमू थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर 9 पर डेब्यू कर रहा है वाइब का टाइटल ट्रैक कन्फ्यूजन, इरफाना हमीद और शुभम सुपन खिलरी की आवाज में। दिस इज ऐसी मेरी वाइब।
2: नंबर 9।
3: अलग है लाइफ, अलग है स्टाइल, अलग है हाइप, मेरी अलग है वाइब, अलग है लाइफ।

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot. Mirchi. इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
1: Mirchi मुर्गा. हेलो
2: मुकेश जी.
1: कौन
2: मुकेश जी? मैं ये प्रताप बोल रहा हूँ, राणा मोटर से. आपने जो 1000 दी थी ना, उसका वो जो कार्बोरेटर साफ होना था, वो सर हो नहीं पाया एक्चुअली. थोड़ा
1: नहीं हो पाया भाई.
2: हाँ, वो नहीं हो पाया सर.
1: हाँ जी, नहीं पाया
2: सर, वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी. अच्छा सर, आप बता रहे थे ना पीछे बोनेट से आवाज आ रही है आपकी गाड़ी की.
1: हाँ
2: सर, वो भी हो नहीं पाई है. वो उसमें थोड़ा हो नहीं पाया हमसे अभी.
1: नहीं, क्या हो नहीं पाया तुम्हारे यार, रोज के तुम्हारे जब भी गाड़ी तो नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, क्या मजाक ही क्या है ये?
2: नहीं मुकेश जी, मैं समझ रहा हूँ. वो एक
1: क्या समझ रहे हो भाई?
2: नहीं नहीं, आप सही कह रहे हैं. अच्छा मुकेश जी, आपने एक बताया था ना ब्रेक ऑयल डल रहा है, ब्रेक काम नहीं कर रहे. सर वो ऑयल डल नहीं पाया थोड़ा.
1: अरे तो हो क्या पाया है तुमसे
2: सर? वो
1: ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया. मुझे फोन करना है, मुझे फोन इसलिए कराया कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया.
2: नहीं सर, एक्चुअली
1: आपको तो फोन इसलिए करना था कि भाई ये जो काम दिया गया आपको वो कर दे.
2: नहीं सर, कुछ हो नहीं पाया.
1: क्यों नहीं हो पाया
2: सर? वो रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: है
2: सर, रात गाड़ी चोरी हो गई आपकी.
1: अरे तेरा दिमाग खराब है क्या?
2: अरे सर, मैं वही आपसे कह रहा हूँ. मतलब हम
1: क्या करा दू
2: सर? मतलब आप ये आप आके FIR लिखवा देंगे अपनी गाड़ी की?
1: कैसी FIR? दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल तो नहीं है तू?
2: अरे सर, जितने की गाड़ी थी इतना दे देंगे. आप गुस्सा तो मत करिए कम से कम.
1: गुस्सा ना करूं, नई गाड़ी थी हमारी.
2: नहीं सर, आप आपकी नई गाड़ी थी तो सर हमारे भी तो उसमें कुछ गया है. हमने भी तो ग्रीस व्रीस लगाया.
1: उसमें
2: ग्रीस ग्रीस लगाया, उसमें हमने पेट्रोल डाला है.
1: ग्रीस कितने का? 5 रुपए का लगाया. आग लगा दूंगा मैं तुम्हारे शोरूम में, तुम्हारे वर्कशॉप में.
2: अच्छा सर,
1: मुझे चाहिए अपनी वापस.
2: सर आप इतना गुस्सा ना करें,
1: जिम्मेदारी तुम्हारी FIR कराने की.
2: सर बिल्कुल आप गुस्सा ना करें. अच्छा सर, ऐसा चल सकता है जैसे आप गाड़ी ना लेके कॉम्पोजिट कर दें, हम आज शाम आपको मुर्गा खिला दें और मुकेश वो बन भी गया है मुर्गा.
3: मुकेश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. छोटा सा मजाक किया, तुम्हारे साथ मुर्गा बना दिया तुम्हारा.
1: तो जान निकाल दी हमारी.
3: मुकेश, आपकी गाड़ी वही खड़ी है आपकी वर्कशॉप में, बस उसको धक्का लगाना है और आपको धक्का हम लगा देंगे. मेरे साथ जरा प्यार से कह दीजिए, गुस्सा खत्म करिए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on Mirchi. It's hot.
4: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Oh no!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
9: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? RK Jewels चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट RK Jewels. RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस.
10: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज, कम्स द नाम. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
11: It's 2 a.m. Her fever is climbing and our pediatrician's office is closed till Monday. What do we do?
12: Don't worry. I'm contacting 7 Days Pediatrics. They will answer the call and guide us now. We will be able to see them in the morning.
11: Wait, they can see us on Sunday?
12: We are open 7 days a week, including Sunday. The office is open in the evenings and on weekends, offering same-day sick care. We have been servicing Edison and surrounding areas for the last 25 years. Stop waiting. Start booking online at 7dayspediatrics.com. Visit 7dayspediatrics.com or call 732-548-3210.
13: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
14: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
13: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
14: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
15: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
16: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
15: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: बेटा शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
17: अरे माँ अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स सीधे बैंक या UPI में।
7: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं काम भी फास्ट।
18: टैप टैप सेंड डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
19: Only on Mirchi. It's hot. Number 7. Fun.

0: अरिजीत। फनी है ना, कभी कभी वक्त नंबर्स का मतलब ही बदल देता है। और अब जब अरिजीत अपने प्लेबैक करियर से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, हम एक अजीब से मोमेंट में हैं। गाने अभी भी आ रहे हैं, लेकिन ये वो गाने हैं जिनकी कमिटमेंट अरिजीत ने रिटायरमेंट लेने से पहले ही की हुई थी। यार हमें नहीं पता कि अगला अरिजीत का गाना कब आएगा, जब आ रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा खुशनसीब हैं। और शायद इस वक्त उनकी कहानी का एक हिस्सा वो इंसान शायद सबसे अच्छे से समझता है जो 2005 में उनसे आगे निकल गया था, काजी तौकीर।
1: अरिजीत तो कमाल आदमी, वो तो अभी भी उससे फोन पे बात होती तो सेम, ही इज द सेम, कोई फर्क नहीं उसमें। और उसकी चीज मुझे यही पसंद है कि आप देखो कभी भी वो शोज करता है, कभी ऐसे वो करता नहीं, यू नो दिस इज माय कार, यू नो आई एम समवेयर, यू नो ऑल दोस थिंग्स, बहुत सिंपल। स्कूटी पे घूमता है, दूध लेने जाता है मुर्शिदाबाद, दूध दूध ले, सब्जी वब्जी खरीद, इट्स अनबिलीवेबल। कभी भी उससे बात होती है सेम जैसा वो 17 तब था वैसा ही आज भी।
2: उसके अंदर करप्शन नहीं, ऑनेस्ट। हिंदुस्तान में क्या, मैं बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में आज की डेट में अरिजीत जैसा ना कोई है, आई डोंट थिंक कोई आएगा।
0: शायद इसलिए अरिजीत की आवाज सिर्फ हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा नहीं बनी, वो हमारी जिंदगी का बैकग्राउंड स्कोर बन गया। और एक दिन वो बैकग्राउंड म्यूजिक खामोश हो जाएगा, वो वक्त आ रहा है। लेकिन म्यूजिक कभी रिटायर नहीं होता, एक आवाज रुकती है तो कोई दूसरी आवाज उसकी जगह ले लेती है। नंबर 5 पर कुणाल खेमू की फिल्म वाइब से अमित त्रिवेदी की आवाज और उन्हीं की कॉम्पोजिशन, दिस इज रातों में आना।
3: नंबर 5।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आपके सामने सवाल है, आपके घर में सबसे इंटेलिजेंट कौन है?
1: ऑफ कोर्स मेरी बेटी, शी इज डैम स्मार्ट।
0: पक्का फाइनल आंसर?
1: फाइनल आंसर।
2: जवाब घर वालों को तो पता है, अब दुनिया को भी पता चलने दो मिर्ची बाल गणेश, जहां स्मार्टनेस बन सकती है विनिंग टैलेंट। अपने इंटेलिजेंट बच्चों को रजिस्टर कीजिए, आज ही पार्टिसिपेट कीजिए।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा टू 9033647244, दैट इज 9033 मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
7: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
8: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
2: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
0: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इज़िलिन।
11: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए

0: दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
1: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजोकर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
2: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
3: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
4: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
5: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
6: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है।
7: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट prayogtheatre.com।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: Tera kya hoga, Kalia?
11: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
10: Ab, mirchi kha.
12: Radio Mirchi, it's hot.
13: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
14: Number 4.

0: आंखों से तूने ये क्या कह दिया। और मुझे लगता है कि इस गाने के टॉप 5 तक पहुंचने का सबसे बड़ा रीजन इसका म्यूजिक नहीं है, फैमिलियरिटी है। क्योंकि गाना चलता है तो जहन में आते हैं आमिर खान, रानी मुखर्जी और 90s का वो साउंड। देखो कुछ चीजें सुनते ही हमारी मेमोरी है ना वो एक्टिवेट हो जाती है, और बॉलीवुड फैमिलियरिटी को बहुत अच्छे से समझता है। पुराने गाने रिक्रिएट करो, पुरानी फ्रेंचाइजीज को वापस ले आओ, पुराने कैरेक्टर्स को दोबारा स्क्रीन पे खड़ा कर दो, क्योंकि फैमिलियरिटी में रिस्क नहीं होता और ऑडियंस पहले से इन्वेस्टेड होती है। नंबर 3 पर बाय द वे है चुनरी चुनरी, इसका एक और एग्जांपल बाय द वे, जहां एक पुरानी याद को नए जमाने के लिए दोबारा पैकेज किया गया। लेकिन इसी बॉलीवुड में कभी कभी एक ऐसा फिल्म मेकर आता है जो फेमिलियरिटी को साइड में रखकर इतना ओरिजिनल साउंड ट्रैक क्रिएट करने की कोशिश करता है कि गाने फिल्म को समझने का दूसरा रास्ता बन जाते हैं। रामायण का जो नया गाना आया है उसे सुनते ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार रणबीर कपूर को हमने आखिरी बार स्क्रीन पर 3 साल पहले देखा था एनिमल में। और एनिमल के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो रणबीर के साथ सबसे ज्यादा जो मुझे याद रहता है वो है उस फिल्म का म्यूजिक। और उस मैडनेस के पीछे एक मेथड था और ये रणबीर ने खुद बताया।
1: See, to give music for a love story is very easy. एक फैमिली क्राइम ड्रामा के लिए 7 सुपरहिट गाने देना is such a hard thing. हर गाना, हर बैकग्राउंड पीस शूटिंग के पहले रेडी था। अगर हम फाइट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि गाना लिप सिंक नहीं है, तो he could have easily recorded it after shoot. But every piece which is the 3 hour 20 minute पे जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले हुआ है वो रेडी था शूटिंग के पहले। सो एज एक्टर जब आप बैकग्राउंड सॉन्ग सुनते हो आपको वो टोन मिल जाता है सीन का, इट मेक्स इट इजियर फॉर यू।
0: इसलिए एनिमल में म्यूजिक सीन के बाद नहीं आता, म्यूजिक सीन के अंदर पहले से मौजूद होता है। और शायद एनिमल की कामयाबी ने संदीप रेड्डी वांगा को अब एक और चीज दे दी है और वो है आजादी। क्योंकि उसका जो सीक्वल आ रहा है ना एनिमल पार्क, शायद ये आजादी कितनी दूर जाएगी ये तो नहीं पता, लेकिन अगर पहली फिल्म को इंडिकेशन है तो म्यूजिक चीर फाड़ करने वाला है। अगर मुझे एनिमल के उस पूरे इमोशनल लैंडस्केप में कोई ऐसा गाना ढूंढना है जो पूरी कहानी को समेट ले तो मेरे लिए वो ये गाना है बी प्राक की आवाज में। इट इज माय पिक ऑफ द वीक।

0: ग्रीन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
6: बेटा, शादी नेक्स्ट वीक है और तुम्हारा अभी पैसे भेजता हूँ सिर्फ डायलॉग ही है।
7: अरे माँ, अभी भेजता हूँ, टैप टैप सेंड है ना, इंडिया पैसे भेजने का स्मार्टर वे टैप टैप सेंड, विद जीरो ट्रांसफर फीस, कॉम्पिटिटिव रेट्स और 95% ट्रांसफर्स इन अंडर 3 मिनट्स, सीधे बैंक या UPI में।
6: अरे वाह, इस बार सिर्फ एक्सेंट ही नहीं, काम भी फास्ट।
8: टैप टैप सेंड, डाउनलोड एंड सेंड मनी टू इंडिया टुडे। टैप टैप सेंड पेमेंट्स को इज लाइसेंस्ड एज अ मनी ट्रांसमिटर बाय NYS NMLSID 2108069।
0: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
9: तेरा क्या होगा कालिया?
10: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
9: अब मिर्ची खा।
11: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
12: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
13: नंबर 2।

0: नंबर दो पर आते ही एक इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हो गया है। एक तरफ वो फिल्म है जिसे रणवीर सिंह के करियर का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ नंबर वन पर फिर से वही गाना है जो एक ऐसी फिल्म से आया है जिसके बारे में शायद उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि वो इमरान हाशमी के करियर की टर्निंग पॉइंट बन जाएगी। आई एम टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट आवारापन। इमरान का जो अर्ली करियर था ना, वो काफी इंटरेस्टिंग था। फिल्में चल रही थी, गाने भी चल रहे थे, ऑडियंसेस भी आ रही थी, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उन्हें इमरान हाशमी में एक्टर से ज्यादा एक इमेज नजर आती थी। किसिंग सीन्स आए तो सीरियल किसर का टैग लग गया, लेकिन फिर आई आवारापन। देखो फिल्म नहीं चली ये सब जानते हैं, लेकिन इमरान के लिए कुछ बदल गया। उन्होंने पहली बार अपने आप को उस इमेज से बाहर दिखना शुरू किया, और वो खुद इस जर्नी को कुछ इस तरह याद करते हैं।
1: मेरा कभी नहीं था कि मुझे क्रिटिक्स को अपीज करना है। मुझमें कहीं एक चाह थी कि यार अभी बस हो गया, ये प्रोड्यूसर्स को ज्यादा ही दे हैव एक्सप्लॉइटेड द फैक्ट दैट देयर इज इमेज। एंड हाँ, फिल्में चल रही हैं, बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी मिल रही है, बट फ्रॉम इनसाइड आई फायर टू काइंड ऑफ ऑल्सो एक्सप्लोर अनदर फैसेट ऑफ एक्टिंग, जहाँ तक कैरेक्टराइजेशन हो। एंड देन थैंकफुली वी स्टम्बल्ड अपॉन दिस व्हिच टच्ड अपॉन सम रियली सेंसिटिव थिंग्स, यू नो, लूजिंग समवन यू लव। So a very painful moments, and it kind of satiated me as an actor.
0: यार कभी-कभी एक्टर को करियर बदलने के लिए ब्लॉकबस्टर नहीं चाहिए होती है, उन्हें सिर्फ एक ऐसी फिल्म चाहिए होती है जो उन्हें ये प्रूव कर दे कि वो और भी कुछ कर सकते हैं। एंड आवारापन ने इमरान में वो जज्बात जगाए। उसके बाद डायरेक्टर्स आए, कैरेक्टर्स आए, और धीरे धीरे वो एक्टर भी सामने आया जो उस इमेज के पीछे छुपा हुआ था। और शायद इसलिए आज जब दुनिया आवारापन को सेलिब्रेट कर रही है, बॉक्स ऑफिस के लिए, नॉस्टैल्जिया के लिए, इमरान हाशमी के कमबैक के लिए, तो मुझे इस फिल्म की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये लगती है कि इसने इमरान हाशमी के पूरे इमेज को तोड़ दिया और बदलने का मौका दिया। एंड इजंट दैट व्हाट ग्रेट सिनेमा इज। फिल्म्स कभी कभी एक्टर को स्टार नहीं बनाती है, कभी कभी एक्टर को खुद से आगे जाने की परमिशन देती है। नंबर वन पर फिर से द रिलेशनशिप कंटिन्यूज। दिस इज तेरा मेरा रिश्ता।
2: नंबर one.

0: कुछ गाने खत्म हो जाते हैं, साथ में कुछ कहानियां, लेकिन कुछ आवाजें वो कहीं नहीं जाती। आज की कहानी मैं यही खत्म कर रहा हूँ। गाने चलते रहेंगे, यादें भी बनती रहेंगी, लेकिन हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट ऑन द मिर्ची टॉक 20, दिस इज सुरेन, ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची।
1: हेलो पार्टी पीपल, वेलकम टू क्लब मिर्ची, जहां वीकेंड का मतलब है मंडे की टेंशन को म्यूट और म्यूजिक का फुल वॉल्यूम ऑन करना। चाहे आप डांस फ्लोर पे हो, ट्रैफिक में, या बेड पे हॉरिजॉन्टल होके पार्टी कर रहे हो, टुनाइट वी डोंट जज। वेलकम वंस अगेन टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मी मिर्ची ओयोंथिका। सो लेट्स बिगिन दिस काउंटडाउन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: यार इस वीकेंड कोई जबरदस्त प्लान बताना।
4: अरे मेरा बच्चा है तू, चल तुझे हंसी की फुल डोज दिलवाता हूँ यार।
5: प्रयोग थिएटर ग्रुप के 50th फेस्टिवल में धुरंधर फेम राकेश बेदी और अनंत महादेवन का प्ले लास्ट ओवर और साथ में कलरफुल नौटंकी आला अवसर भी है।
6: संडे सितंबर 27th 4 PM जोएन मजेस्ट्रो परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर ईस्ट ब्रंसविक। बुक योर सीट्स एट प्रयोगथिएटर.com।
7: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
12: Listener mein, back to back gana sunega.
13: Back to back gana sunega.
12: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
14: Ladies and gentlemen, we are gonna go.
15: On a ride.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची. वीकेंड ऑफिशियली ऑन है. बस दो चीजें चाहिए, गुड म्यूजिक और वो फ्रेंड जो बोलता है बस एक ड्रिंक और फिर सनराइज देख के ही घर जाता है. कीप द वॉल्यूम अप बिकॉज़ द नाइट इज यंग और हम भी टेक्निकली यंग ही है.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: नारद, पृथ्वी लोक में आजकल कौन सबसे बुद्धिशाली है?
2: महाराज, एक नया युग है, बच्चे गूगल से पहले जवाब देते हैं।
1: तो फिर देखो अगला बाल गणेश कौन है। पृथ्वी से देवलोक तक इंटेलिजेंस की खोज जारी है। मिर्ची बाल गणेश, आपके स्मार्ट बच्चे के लिए एक स्मार्ट कॉन्टेस्ट।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप गणपति बापा 2903-364-7244, दैट इज 9033-मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
8: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
9: ओह नो,
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
14: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
13: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
15: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
16: एक ही होता है।
13: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
17: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go on a ride.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। सैया जी हो या बेस्टी, वीकेंड पे एक सवाल फिक्स्ड है, कितने बजे निकलोगे यार? एंड द आंसर इज बस 5 मिनट्स, दैट नेवर कम्स। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल ऑन टिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
5: सोना खरीदने के सोच रहे हैं? आरके ज्वेल्स चलिए, इससे पहले के प्राइस बढ़ जाए, गोल्ड बार्स खरीदे होलसेल प्राइस पे, ओनली एट आरके ज्वेल्स। आरके ज्वेल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस।
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.

0: 키운가?
1: 클럽 매치 only on 매치. We'll be right back after these messages. It's hot.
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा.
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
5: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
4: ऑन अ राइड.
0: क्लब मिर्ची.

वेलकम बैक पार्टी पीपल। अगर आप डांस फ्लोर पे हो रिस्पेक्ट, और अगर सोफा पे हो ऑल्सो मोर रिस्पेक्ट। अगर आप दोनों के बीच डिसाइड नहीं कर पा रहे, कंग्रेचुलेशंस, यू आर द वीकेंड। क्लब मिर्ची में म्यूजिक कंटिन्यूज।